फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 15वीं तिथि। तदनुसार 6 जुलाई सन 2026। इसमें सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारा आज

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 107 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजने को है कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज

0: बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियुलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6:05 हुए, लीजिए सुनिए कार्यक्रम चिंतन।
2: सुख और दुख मनुष्य के जीवन का शाश्वत सत्य है। जब तक मनुष्य जीवित है उसके जीवन में सुख और दुखों की बौछारें समय समय पर होती रहती है। हर प्राणी सुखी रहना चाहता है, इसी के लिए जीवन भर प्रयत्नशील रहता है। फिर भी हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में सुखों का अभाव बना रहता है। जब से संसार की उत्पत्ति हुई है तब से प्रयत्न जारी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसी में लगे रहे। शास्त्रों में भी मनुष्य को सुखी बनाने के उपाय सुझाए गए। इसके बाद भी लोग सुख से वंचित क्यों है? हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मनुष्य जब गरीब रहता है तो उसे लगता है कि यदि उसके पास धन आ जाएगा तब वह सुखी हो जाएगा, किंतु जब धन आया तो उसे पता लगा कि वह पहले से भी ज्यादा दुखी है। क्योंकि

0: अत्यधिक धन के कारण उसके पेट की भूख और रातों की नींदें गायब है। पहले वाली स्थिति भी उसे ज्यादा अच्छी मालूम होती है, क्योंकि तब वह पेट भर खाकर नींद भर सोने की स्थिति में तो था। संसार को दुख का सागर कहा गया है, यानी जब तक संसार है तब तक दुख उसके साथ है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू निष्काम कर्म योगी बन और संसार को मुझ में देख, अर्थात मैं ही संसार हूँ, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। यह तभी संभव है जब तू पहले मैं को तिरोहित कर और अहंकार से निर्वृत्त हो। सारी बाधाओं और दुखों का कारण ही अहंकार है। यह जब तक है तभी तक दुख की अनुभूति होगी। अहंकार जब मरता है तब सुख जीवित होता है। दोनों साथ साथ नहीं रह सकते, एक के लिए दूसरे को मारना होगा। जैसे जैसे अहंकार खत्म होगा मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी, और जब हमारी ख्याति जनचर्चित होती है तब ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग का आनंद प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि हर प्राणी में ईश्वर का निवास है। यह ज्ञान होने पर मन का कलुष दूर हो जाता है। इसके अभ्यास से राग द्वेष ईर्ष्या मद सब दूर हो जाता है। मन की निर्मलता जितनी बढ़ेगी ईश्वर का स्वरूप उतना ही स्पष्ट होता जाएगा। कामनाएं ईश्वरा विमुख होने लगेंगी, अहंकार लुप्त होने लगेगा, विचारों में अपनत्व जागेगा, चारों ओर सुखानुभूति का वातावरण बनेगा, और यह कहना कठिन हो जाएगा कि कौन अपना है कौन पराया और कौन व्यक्ति वशिष्ठ में समिष्ट की ओर प्रवृत्त होने लगा है। जब जीवन सहज और सरल होता है तभी मन में सुविचार आते हैं, मन की गांठें अपने आप खुलने लगती हैं, आग्रह दुराग्रह शांत होने लगता है, दिव्य शक्ति मनुष्य के अंदर जागृत होने लगती है और मनुष्य केंद्रीभूत हो जाता है तथा मन शांत होता जाता है। मन पर बुद्धि का शासन होता है, बुद्धि भगवान के द्वारा प्रेरित होती है, मनुष्य का स्व समाप्त हो जाता है, जीवन आनंद से भर जाता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यह तो नियति का नियम है। इसलिए हमें सुख और दुख दोनों का एहसास होना आवश्यक है, क्योंकि यदि हमें सुख ही सुख मिला तो हमें दुख की अनुभूति नहीं होगी, और यदि दुख ही दुख मिला तो सुख की अनुभूति नहीं होगी। दोनों ही स्थिति में हम यह तय नहीं कर पाएंगे कि हम दुखी हैं या सुखी। इसलिए हमें दोनों ही स्थिति में जीवन को जीने लायक बनाना होगा। हमारी मानसिकता यह रही है कि दुख में तो हम ईश्वर को याद करते हैं, परंतु सुख मिलते ही हम उसे भूल जाते हैं। जबकि हम यह जानते हैं यह जीवन ईश्वर का ही दिया हुआ है, इसलिए किसी भी स्थिति में हमें ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी जीर्ण शरीर का त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। हम जानते हैं कि यह सब ईश्वर की ही देन है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वह अपने विचारों को शुद्ध रखे, ईश्वर के प्रति आस्तिकता रखे, विनम्र बने, स्वार्थ की सीमा से ऊंचा उठकर परार्थ के बारे में सोचे, शुद्ध प्रवृत्ति का त्याग कर ऊपर उठने का प्रयास करें। सुख और दुख दोनों ही जीवन के अंग है, इसलिए दोनों ही परिस्थिति में हमें संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। स्वार्थ परता ही दुख है, क्योंकि जहाँ हम देखते हैं कि हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है तो हम दुखी हो जाते हैं। जब हम इस स्व को पर में परिवर्तित कर देते हैं हमें सुख की अनुभूति होने लगती है, और यही प्राणी को दुख के सागर से पार कराकर सुख के सागर में पहुंचाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM बैंड पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे हरि ओम शरण द्वारा गाए भजनों को।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और कार्यक्रम वंदना में आज आप सुन रहे हैं हरिओम शरण द्वारा गाए भजनों को।

कार्यक्रम वंदना में आज आप सुन रहे थे हरिओम शरण द्वारा गाए भजनों को, और इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। FM 1 पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कृषि चर्चा, जिसमें चर्चा का विषय है खरीफ फसलों की आधारभूत तैयारी एवं प्रबंधन। वार्ताकार हैं हरीश कुमार राठौर, अनुविभागीय कृषि अधिकारी रायगढ़। कार्यक्रम कृषि चर्चा में चर्चा का विषय फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन। वार्ताकार हैं डॉक्टर G.R. राठिया, सहायक प्राध्यापक मृदा विज्ञान कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र बेड़दादर रायगढ़।

0: राम राम कृषक भाई मन। आज आप लोग को मैं क्या बोलते हैं, मुख्य पोषक तत्व सुने होंगे आप लोग, लेकिन मुख्य पोषक तत्व के अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी महत्व, उसकी कमी के लक्षण कैसे पौधे में पहचानेंगे इसके बारे में चर्चा करूंगा। जैसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, ये मुख्य आता है, इनको ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिंक है, बोरान है, आयरन है, मैग्नीज है, कापर है, मॉलिब्डेनम है, इनकी क्या बोलते हैं एक एक करके मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। जैसे ये क्या बोलते हैं, आयरन के लिए है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट हम उपयोग करते हैं, ये आसानी से ग्रहण कर लेता है पौधा सोल्यूशन फॉर्म में। और इसके लिए क्या बोलते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा क्या बोलते हैं, आसानी से प्राप्त अकार्बनिक स्रोत में जैसे कि साल्ट रूफ है, सोडियम बोरेट है, सोडियम मॉलिब्डेट है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। मंद अकार्बनिक स्रोत के रूप में वी एस धातु मिश्र आता है, जैसे आपका क्या बोलते हैं बोरेक्स है बोरान के लिए, और कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, फेरिक सल्फेट है, ये सब रासायनिक रूप है, इनको उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद क्या बोलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं बात आती है कि इसको हमको भूमि में कब अप्लाई करें, ये भी जानना जरूरी है। जैसे कि सल्फर है, जिंक है, कॉपर है, इसको हमको भूमि में अप्लाई करना प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा बोरान है, बोरान को हमको भूमि में या फिर जो पांडी छिड़काव, पत्ता में छिड़काव करना चाहिए। और आयरन है, मैग्नीज है, इसको हमको, इसको भी पत्ता में छिड़काव करना प्रेफर करना चाहिए सोयल की अपेक्षा। और मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम भी एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म तत्व है, इसको हमको बीज उपचार के रूप में उपयोग कर सकते हैं या फिर क्या बोलते हैं ये पत्ती छिड़काव में। तो इस प्रकार से क्या बोलते हैं, ये जो सभी सूक्ष्म पोषक तत्व है इस प्रकार से हमको भूमि में या पत्ती छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे पेस्ट बना के भी हमको इसको उपयोग कर सकते हैं, या फिर मिट्टी में क्या बोलते हैं लई बना के इसको उपयोग कर सकते हैं। इसको हमको पौधा की जब यंगर अवस्था है उसमें क्या बोलते हैं थोड़ा सा अप्लाई कम करना चाहिए, जब मेच्योर पौधा उसमें अप्लाई की मात्रा, उसको कंसंट्रेशन ज़्यादा रख सकते हैं। अगर यंगर है पौधा, यंग है, तो उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन जानेंगे तो उसको जलने की संभावना रहती है। तो ये सब बात को हमको पौधा की अवस्था के बारे में जानना है। लोहा के क्या बोलते हैं कमी के लक्षण छोटी अवस्था में प्रकट होती है, एक इसमें जो हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, क्लोरोफिल के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो इसका जो लक्षण है, पत्ती की जो सीरा होती है, जो नस होती है, वहाँ पास हरापन गायब हो जाता है और अग्रभाग जो मृत्यु हो जाता है, जैसे टमाटर में अधिक ये दिखता है। या धान की फसल की बात करें तो नर्सरी अवस्था में आयरन की कमी के लक्षण ऊपरी की पत्ती में पीलापन पड़ने लगता है, ठीक है। पीलापन पड़ने के बाद सफेद होने प्रकट हो जाता है। तो इस समय हमको अगर उर्वरक को छिड़काव करते हैं तो उसके हमको कमी, आयरन के जो कमी है, लोहा कमी, उसको दूर कर सकते हैं। इसके लिए फेरस सल्फेट 0.2 से 0.3% का उपयोग करना चाहिए, या फिर हमको क्या बोलते हैं 200 से 300 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है मैग्नीज है। मैग्नीज का कार्य है जो हमारे एंजाइम है, एंजाइम का क्या बोलते हैं सक्रियता को बढ़ाता है। इसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषण है उसको भी बढ़ाता है और क्या बोलते हैं पौधों में चमक लाता है। इसके कमी के लक्षण पहचाने का तरीका है कि जो नई पत्ती है उसमें जो हल्का हरापन, क्या बोलते हैं नोक का जो हरापन है वो गायब होता है, और सीरा के बीच में क्या बोलते हैं पीला दिखाई देता है, और बीच बीच में टिश्यू है जो ऊतक मर जाता है, और धान में फसल खास करके जो भूरापन दिखाई देता है। इस प्रकार से हम देखें तो जो सब्जी वर्गीय फसल है, आलू है, टमाटर है, पालक है, पत्ता गोभी है, सेम है, इसमें जो ऊतक है उसका वो गलना प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा जिंक है, जिंक की बात करें तो धान में खैरा रो होती है और पूरा कत्थई कलर दिखाई देने लगता है। इसके लिए हमको रोपाई के समय 20 से 25 दिन बाद सामान्यतः प्रकट होती है, उस समय हमको 5 ग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 ग्राम चूना प्रति लीटर पानी में छिड़काव करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, जिसमें चर्चा का विषय था फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन। वार्ताकार थे डॉक्टर जीआर राठिया, सहायक प्राध्यापक मृदा विज्ञान कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र बोरधागा रायगढ़। इसके साथ कृषि चर्चा अब संपन्न होता है। FM बैंड पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:35 हुए, लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी जानकारी जो आज हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित किए जाएंगे। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे 6:40 पर रामचरित मानस गान, 6:50 पर होगा देश गान, 6:55 पर संस्कृत समाचार।

सात बजे हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:05 पर। झरोखा कार्यक्रम का वक्त होगा 7:35 पर, जिसमें चर्चा का विषय होगा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर आप सुनेंगे 7:45 पर। समाचार प्रभात आप सुनेंगे सुबह 8:00। 8:15 पर मनी न्यूज आप सुनेंगे। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:00, 11:00, पुनः 12:00। ये कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

सुगम संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 10:10 पर। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का वक्त होगा 10:30 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 9:55 पर और पुनः 11:55 पर।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट। शामी गजल आप सुनेंगे शाम 5:10 पर। युवाणी कार्यक्रम का वक्त होगा 5:30 पर। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। ये समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 6:45 पर। ये समाचार अनुप्रसारित होगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। चौपाल कार्यक्रम का वक्त होगा 7:20 पर, जिसमें आज की बात होगी इस मास के उद्यानिकी कार्य। आज की नसीहत में आप सुनेंगे बकरियों के सामान्य रोग, कारण, लक्षण और बचाव। साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। 11 फिल्मी गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:20 पर।

विविध संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर।

0: कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। FM बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:40 हुए, लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान की 64वीं कड़ी। गायक कलाकार है महेंद्र कपूर, संगीत निर्देशन है आकाशवाणी के लिए सतीश भाटिया का।
1: एपिसोड 64 6

कपटी मुनि एक तनु ने राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का ये उपाय बताया कि वो एक वर्ष तक नित्य प्रति 100,000 ब्राह्मणों को उनके कुटुंब सहित भोजन कराए। उसी समय वहाँ कालकेतु नामक राक्षस आया। वो तपस्वी राजा अर्थात कपटी मुनि का गहरा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र तथा 10 भाई थे जो अजेय,

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर। इसी के साथ रामचरितमानस गान अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:50 हुए हैं, लीजिए सुनिए देश गान। रचनाकार हैं गिरजा कुमार माथुर।

अभी आप सुन रहे थे समूह सोनू देशगान। इसी के साथ देशगान अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रमुखाभिनव परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। एतासु योजनासु द्वात्रिंशदधिकद्विशत अन्नसंग्रह भण्डाराणां लोकार्पणं, सहकार वनस्य भूमिपूजनं, उत्तरप्रदेश महाराष्ट्र राज्ययोः ट्रिशु कल्चर इति सुविधायै भूमिपूजनं, राष्ट्रिय सहकारी डेटाबेस एनसीडी 3.0 इत्यस्य भौगोलिक चिन्हांकन दूरभाषानुप्रयोगस्य च आरम्भः। जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेशे प्रचलन्त्यां वार्षिक श्री अमरनाथजी यात्रायां श्रद्धालूनां महत्सम्मर्धः दृश्यते, यत्र यात्रायाः प्रथमेषु त्रिषु दिनेष्वेव 650,000+ जनाः पवित्र गुहा मन्दिरे समागताः। रविवासरे प्रायः 25,000 भक्तैः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्य दर्शनं विहितम्। इतः पूर्वं द्वितीय दिने प्रायः 20,000 जनाः, उद्घाटन दिवसे च 12,000+ तीर्थयात्रिणः भगवतः दर्शनं लब्धवन्तः। अनेन सहैव जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिंह श्वः नुवान पहलगाम इति आधार शिबिरस्य निरीक्षणं विधास्यति। सममेव ह्यः तत्र तीर्थयात्रिभ्यः कल्पितानां व्यवस्थानां प्रबन्धानां च सूक्ष्म पुनरीक्षणं तेन कृतम्। देशस्य विशालेषु भूभागेषु प्रावृत् स्थितिः अत्यधिकं तीव्रीभूता सञ्जाता, येन हि अतिवृष्टिः, मेघगर्जनं, विद्युत्पातः, प्रचण्ड चक्रवात वायुः च प्रचलति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्षु दिनेषु गुजरात राज्यस्य कतिपय भागेषु, हरियाणा पंजाब राजस्थानेषु च प्रावृत् स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। विभागेनाद्य छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अपरतः आगामिषु द्वित्रिदिनेषु राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां, उत्तरप्रदेशे, पंजाबे, चंडीगढ़ क्षेत्रे विकीर्ण रूपेण वृष्टिः संभाव्यते। विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सर्बिया देशस्य लब्ध प्रतिष्ठेन क्रीडकेन नोवाक जोकोविचिन रूस देशस्य रोमन सफ्यूलिनं पराजित्य पुरुषेकल क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। इतः परम् असौ फेलिक्स नगरे उत डेविवोचिस इत्यनेन सह क्रीडां करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रम्बनन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य हितधारक उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की

0: आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास को बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालन ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़त दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। ब्राजील की हार के बाद नेमार जूनियर ने संन्यास की घोषणा कर दी। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे अब तीसरी टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप हमें सुन रहे हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 16.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। श्रोता, आकाशवाणी की इस सुरमयी प्रस्तुति में आपका हार्दिक स्वागत है। मधुर सदाबहार और मनभावन गीतों की सुंदर कड़ी में प्रस्तुत है ये गीत फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से, जिसे गाया है ऐश किंग और साशा तिरुपति ने। अराफात महमूद और तनिष्क बागची ने इस गीत को लिखा है। तनिष्क बागची का ही संगीत है।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: धर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंज

0: भारती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती।
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन।
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: संदेश से पहले आपने सुना सनम रे फिल्म का गीत, जिसे गाया था मिथुन और अरिजीत सिंह ने। अनिरुद्ध भोला मिथुन के लिखे इस गीत को संगीत दिया था मिथुन ने ही। अगला गीत सुनिए फिल्म यारियां से।

अभी आप सुन रहे हैं यारिया सुनकर की, जिसे गाया है मोहम्मद इरफान और गजेंद्र वर्मा ने। मिथुन के ही बोल है और संगीत यह है मिथुन ने ही।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए

एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म गबर इज बैक का गीत अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की स्वर में। मनोज यादव ने इस गीत को लिखा था, चिरंतन भट्ट का संगीत था। श्रोताओं, मधुर स्वरों के साथ आज का हमारा चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 7:35 हुए, लीजिए सुनिए कार्यक्रम झरोखा।

नमस्कार सुप्रभात श्रोता मित्रों, आज नए विषय के साथ उपस्थित हूँ आपकी रेडियो दोस्त दिनेश्वरी यादव। कार्यक्रम झरोखा में सभी श्रोता साथियों का स्वागत है। श्रोता साथियों, जब प्रकृति का उपहार प्रगति का आधार बन जाए, जब सूरज की किरणें हर घर के लिए बचत और आत्मनिर्भरता का संदेश लेकर आए, और ये बातें इशारा कर रही हैं कि विकास एक नई

दस्तक दे रहा है और इसी उज्जवल सोच और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना ने सौर ऊर्जा को आम नागरिक के घर तक पहुंचाने का नया मार्ग प्रशस्त किया है। दोस्तों, हमारे देश के अधिकांश भाग में वर्ष भर भरपूर धूप उपलब्ध रहती है। यदि इस प्राकृतिक ऊर्जा का सही उपयोग किया जाए तो बिजली की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। इसे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य देश के नागरिकों को रूफ टॉप सोलर प्रणाली से जोड़ना है ताकि वे अपनी छत पर सौर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन स्वयं कर सके और बिजली के बिल में उल्लेखनीय बचत कर सके। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित क्षमता तक रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने पर केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। यदि सोलर संयंत्र से आपकी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है तो नेट मीटरिंग व्यवस्था के माध्यम से अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जा सकती है। इसके बदले बिजली वितरण कंपनी के नियमों के अनुसार लाभ भी प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं पात्रता की। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक भारतीय नागरिक होने चाहिए, उनके नाम पर वैध घरेलू बिजली कनेक्शन होना जरूरी है तथा घर की छत सौर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। दोस्तों, आवेदन की प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। सबसे पहले योजना के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करें, उसके बाद अपना राज्य बिजली पोर्टल पर पंजीकरण करें, उसके बाद अपना बिजली वितरण कंपनी और उपभोक्ता संख्या दर्ज करें। आवेदन स्वीकृत होने के बाद अधिकृत विक्रेता से सोलर संयंत्र स्थापित कराएं। निरीक्षण और नेट मीटर लगने के बाद सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। श्रोताओं, यह योजना केवल बिजली का बिल कम करने की योजना नहीं है, यह पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम जितना ज्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे उतनी ही जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम होगी। दोस्तों, आप भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ जरूर उठाएं। और अब वक्त है एक गीत का, तो श्रोता साथियों इस गीत का आनंद लें।

झरोखा कार्यक्रम से अब अपनी रेडियो दोस्त दिनेश्वरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे झरोखा, ये कार्यक्रम समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम बाजी मंदिर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे जीवनदास शिंदे और कविता खापड़े द्वारा गाए लोकगीतों को।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मंदिर, जिसमें आज आपने सुना जीवंता शिंदे और कविता खापाड़े को। और इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मंदिर अब संपन्न होता है। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 7:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी जानकारी जो आज हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित की जाएंगी। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात सुबह 8:00, 8:15 पर बनी न्यूज। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात 8:30 पर आप सुनेंगे उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे। 9:00, 11:00 पुनः 12:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इन कार्यक्रमों का अनुप्रसारण होगा। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 9:55 पर एवं 11:55 पर। ये समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। सुगम संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 10:10 पर। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारा हाथी हमार गोट शाम में गजल आप सुनेंगे शाम 5:10 पर। 5:30 पर होगा युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी, जिसमें आज ही बात होगी सकारात्मक सोच और कार्यों में ऊर्जा लगाएं। चर्चा होगी मेडिकल करियर में जनसेवा का अवसर, साथ ही होगा क्रम पत्र मेला। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। छत्तीसगढ़ी प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 6:10 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 6:20 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। चौपाल कार्यक्रम का वक्त होगा 7:20 पर, जिसमें आज की बात होगी इस मास के उद्यान

ये कार्य। साथ ही आज की नसीहत में आप सुनेंगे बकरियों के सामान्य रोग कारण लक्षण और बचाव, साथ ही होगा आज का टिप कृषक मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:20 पर। समाचार संध्या आप सुनेंगे 8:45 पर। ये समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम अनुप्रसारित होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 10:00। विविध भारती कार्यक्रम रिले किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 9:00 से 10:00 तक। तत्पश्चात विविध संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:00। फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध आप सुनेंगे 10:30 पर। हिंदी में समाचार 11:00 और 11:05 पर। अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचार संध्या आप सुनेंगे 8:45 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 9:00 से 10:00 तक। विविध संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 10:00। और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 8:00 को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की

0: चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नीत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। ये बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
4: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि नए साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
5: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान

0: बेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉ मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
3: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था, देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखा।

0: में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एम्बार्क ऑन अ 6-डे विजिट टू इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बिगिनिंग टुडे। India to chair UNCTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Kerala beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust convenes meeting at its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after 5-time world champion Brazil suffer stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia this evening on a 2-day visit. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since the elevation of India-Indonesia ties to the level of comprehensive strategic partnership in May 2018. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto tomorrow and review the progress made in the partnership. Our correspondent has filed this report.
3: The entire island nation is buzzing with excitement and optimism as the Prime Minister Modi arrives here this evening for a 2-day state visit. Mr. Prabowo Subianto and Prime Minister Mr. Narendra Modi are expected to discuss on strengthening the comprehensive strategic partnership with a focus on defense cooperation, trade and investment, food and energy security and cultural collaboration. The highlight of the Jakarta's program will be Prime Minister Modi's address to the Indian diaspora, which is drawing excitement across the country. Communities from Bali, Medan, Semarang, Surabaya and Jakarta are preparing a grand welcome, complete with cultural

उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं निर्मला देवी द्वारा गाए हुए चुनिंदा गायन शैलियों को, और अभी आपने सुना ठुमरी शैली में ये गायन। अगला गायन सुनिए चैती शैली में।

योजना केवल कुछ ही समय तक।

राशिद की गजल अभी आप सुन रहे थे। अब समाप्त होता रायगढ़ की।

दोस्तों, जब भी आपके संदेश आते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप सब यही हमारे साथ बैठे हैं। आपके हर संदेश में अपनापन और उत्साह झलकता है। इसी अपनेपन के साथ ये पत्र भेजा है हमें गौशाला पारा रायगढ़ से विनोद कुमार गुप्ता, रीना यीशु और अंशु गुप्ता ने। इन्होंने लिखा है कि माननीय सहायक केंद्र निर्देशक रवि आनंद जी को प्रणाम व नमस्ते। दोस्तों, आपको भी नमस्ते। आगे वे जिक्र करते हैं कि इन्हें हमारे केंद्र से प्रसारित युववाणी के साथ बाकी अन्य कार्यक्रम भी बहुत प्रिय हैं। नए कार्यक्रम प्रमुख रवि आनंद जी के पद स्थापना के बाद रायगढ़ में नए नए कार्यक्रमों का आगमन होगा, ऐसा ही इनकी आशा है। दोस्तों, जान के बहुत अच्छा लगा कि आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, साथ ही नए कार्यक्रमों को लाने से संबंधित आपके विचार भी हमें अच्छे लगे। आपने अपने पत्र में सुझाव भी दिया है कि छत्तीसगढ़ी लोकगीत, आपकी फरमाइश, युववाणी, तरुणों की पसंद जैसे प्रोग्रामों की अवधि बढ़ा के 1 घंटे की जाए। साथ ही पत्र मिला क्रम, जो अभी महीने के पहले सोमवार को प्रसारित होता है, उसे हर सोमवार को प्रसारित किया जाए। दोस्तों, हमें ये जान के बेहद खुशी हो रही है कि आपको हमारे ये कार्यक्रम इतने पसंद आते हैं कि आप उन्हें और अधिक समय तक सुनना चाहते हैं। आपका ये स्नेह, अपनापन और जुड़ाव हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जहां तक आपके सुझावों की बात है, तो कार्यक्रमों की अवधि और प्रसारण की समय सारणी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तय की जाती है। ये शेड्यूल पहले से तय व्यवस्था के तहत चलता है, इसलिए फिलहाल सभी कार्यक्रम उसी निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रसारित किए जा रहे हैं। फिर भी आपके सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हम इसे संबंधित विभाग तक जरूर पहुंचाएंगे और उन तक बात पहुंच भी रही है आज के क्रम पत्र मिला के जरिए, ताकि जब भविष्य में जब भी कार्यक्रमों की समीक्षा हो, तब आपके सुझावों पे भी जरूर विचार किया जा सके। उम्मीद है आप आगे भी इस तरह हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहेंगे और अपने सुझावों, प्यार, स्नेह से भरे पत्र भेज के हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये पत्र भेजने का। आगे भी भेजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके अगले संदेश का। दोस्तों, इसी के साथ चलिए सुनवाते हैं आपको प्रशांत पांडे का लिखा फिल्म लापता लेडीज का ये गाना। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने, धुन बनाई है राम संपत ने।

दोस्तों अगला संदेश भेजा है हमें गडीस धाम परसुली जिला बालोद से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतिन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी ने अपने भेजे ईमेल में इन्होंने 12 मई 2026 का युववाणी प्रोग्राम जिसे पेश किया था ऋषा यादव ने वो बहुत पसंद आया, साथ ही उसमें बताई गई जानकारियां इन्हें बहुत अच्छी लगी। इसके साथ ही क्रम एक ही कलाकार में मजरूह सुल्तानपुरी के गीतों को भी इन्होंने बहुत पसंद किया। दोस्तों आपको हमारा युववाणी प्रोग्राम पसंद आया और उसमें शामिल जानकारियां भी बहुत अच्छी लगी, ये जान के हमें भी बहुत अच्छा लगा। साथ ही आपने मजरूह सुल्तानपुरी के गीतों को पसंद किया, ये जान के हमें बहुत खुशी हुई। आगे भी हम ऐसे जानकारियां और ऐसे क्रम प्रस्तुत करते रहेंगे। आपकी ये प्रशंसा से भरी बातें ऋषा जी तक आज के क्रम पत्र मिला के जरिए पहुंच रही है। आगे भी अपने विचार हम तक भेजते रहिएगा, हमें ईमेल करने का बहुत शुक्रिया आपका। आपके अगले संदेश का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों इसके बाद अगला ईमेल है बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा श्रीमती सविता बेबी स्वाति संध्या माही छुटकी शरद कीरत दीपक जी ने अपने भेजे ईमेल में 25 जनवरी 2026 रविवार के प्रोग्राम की प्रशंसा इन्होंने की है। साथ ही उस दिन की जानकारियां जो लीगल काउंसिल डिफेंस कानून पे जानकारियां दी गई थी वे भी इन्हें बहुत अच्छे लगे। दोस्तों ये जान के अच्छा लगा कि आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया, आपने अपना समय निकाल के अपनी प्रतिक्रिया ईमेल के जरिए हमसे साझा की, ये जान के हमें बहुत अच्छा लगा। आप आगे भी अपनी बातें अपने विचार कुछ भी शिकायतें व सुझाव हो हमसे साझा ऐसे ही करते रहेगा। आपके अगले संदेश का हमें इंतजार रहेगा, हमें ईमेल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आप भी अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं ईमेल और पत्रों के जरिए। हमें पत्र

भेजें। पत्र के लिए पता है। क्रम पत्र मिला युवाणी प्रभाग द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 21 आकाशवाणी रायगढ़। आप हमें ईमेल के जरिए भी अपनी बातें, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक साझा कर सकते हैं। हमें ईमेल कीजिए shrotarayagarh@gmail.com पे। सब्जेक्ट में पत्र मिला जरूर लिखें। दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के कार्यक्रम का समापन। मुझे अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या।

युवा आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र है 6 बजे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

में पहले की राजधानी जकार्ता पहुंचे। प्रभुवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। इस

राहत फतेह अली खां, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे माई नेम इज़ खान का ये गीत। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
3: कहाँ
6: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
7: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
10: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
9: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
10: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
9: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
10: क्यों?
9: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
11: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
12: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
13: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
12: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
13: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
12: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
13: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
11: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अपेक्षा

0: मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। केंद्रीय मंत्री ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम करने की अपील की। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
1: कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उस

0: ये 5 साल में किया है।
1: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में 103 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इनमें छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक छात्रावास, कैंसर भवन के विस्तार और चिकित्सकों तथा कर्मचारियों के आवासीय परिसर सहित विभिन्न निर्माण कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ ही विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेगा। यह परियोजनाएं प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई प्रदान करेगी तथा मरीजों, विद्यार्थियों और चिकित्सकों को इसका लाभ मिलेगा।
2: से पूरे प्रदेश को लाभ होगा, क्योंकि मेकाहारा एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पर पूरे प्रदेश से लोग इलाज के लिए आते हैं। तो यहां पर छात्रावास का भी आज भूमि पूजन किए हैं और कैंसर के लिए ये मेकाहारा बड़ा फेमस है और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, बाहर से भी लोग यहां पर इलाज के लिए आते हैं।
1: कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी संबोधित किया। गौरतलब है कि परियोजना के पहले चरण में 200 सीटर आधुनिक छात्र छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, वहीं दूसरे चरण में कैंसर भवन का विस्तार किया जाएगा। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉ मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने आज लोकभवन में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने कहा कि डॉ मुखर्जी का राष्ट्र की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में डॉ मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ मुखर्जी के दिखाए पथ पर अग्रसर होते हुए हम विकसित और सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 5 संभाग मुख्यालय और सभी जिलों में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसके लिए करीब 10 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 का कल समापन हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले चिंतन शिविरों के सुझावों के आधार पर मंत्रालय में ई ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसी पहले सफलतापूर्वक लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी प्राप्त सुझावों को शीघ्र नीतियों और प्रशासनिक सुधारों के अनुरूप लागू किया जाएगा। शिविर में सुशासन, तकनीक, कृषि, पर्यटन, नेतृत्व विकास और विकास परक राजनीति जैसे विषयों पर विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों ने विचार विमर्श किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं कई नदी नाले उफान पर हैं। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण

0: महमरा एनिकट के करीब 5 फीट ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे नदी किनारे के क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने महमरा गांव जाने वाले मार्ग और पुलगांव स्थित छोटे पुल को आवागमन के लिए बंद कर दिया है। वहीं थनौत से लेकर अरसनारा तक नदी के किनारे बसे गांवों के लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। वहीं रायगढ़ जिले में पिछले 36 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण कई स्थानों पर सड़कों में जलजमाव के साथ ही निचली बस्तियों में स्थित घरों में पानी भर गया है। जलभराव के कारण प्रशासन ने केलो बांध के 4 गेट खोल दिए हैं, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इधर बलौदाबाजार जिले में महानदी पर रोहासी और अमेठी गांव को जोड़ने वाले एनिकट में 2 से 2.5 फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिसके कारण अमेठी और वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों का पलारी क्षेत्र और बलौदाबाजार से संपर्क टूट गया है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान बिलासपुर संभाग के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
1: आज प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है और उत्तर छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से बिलासपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की चांसेस है। अति भारी वर्षा के साथ साथ सीमांत भारी वर्षा भी होने की चांस है, मतलब लगभग 200 mm से ऊपर भी 1-2 स्थानों पर होने की चांस है। बिलासपुर संभाग के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सरगुजा संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे के पश्चात येलो अलर्ट जो है वो सरगुजा संभाग ने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जारी किया है।
0: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। योजना के तहत निम्न दाब घरेलू, बीपीएल और कृषि श्रेणी के पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि और अधिभार में नियमानुसार छूट दी जा रही है। पावर कंपनी ने पात्र उपभोक्ताओं से 30 सितंबर तक योजना का लाभ लेने की अपील की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 1 महीने बढ़ाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कल 7 जुलाई तक किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत एमटेक, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेने वाले चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमाह 50,000 रुपये फेलोशिप दी जाएगी। ट्यूशन फीस का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप कार्यक्रम नवा रायपुर स्थित IIIT NR में संचालित की जा रही है। जगदलपुर के आड़ावाल स्थित शासकीय लाइवलीहुड कॉलेज में कल 7 जुलाई को संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले के माध्यम से निजी क्षेत्र के विभिन्न कंपनियों के लगभग 1500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ मेले में शामिल हो सकते हैं। कोरबा पुलिस ने बीते 1 जुलाई को छुरी कला स्थित ज्वेलर्स दुकान में हुई लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि तीनों आरोपी पूर्व में हत्या, दुष्कर्म और अन्य गंभीर मामलों में जेल की सजा काट चुके हैं। जेल में ही उनकी दोस्ती हुई और रिहाई के बाद उन्होंने चोरी की मोटरसाइकिल और देशी कट्टे की मदद से लूट की योजना बनाई। नगरी प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी निकायों में बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने इस संबंध में सभी नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमन टिकन ने आज भारत सेवाश्रम संघ द्वारा संचालित प्रणवानंद अकादमी में रोबोटिक्स लेबोरेटरी का लोकार्पण किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता वितरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। और गनियारी के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम अब डॉक्टर तीजनबाई शासकीय हाई हायर सेकेंडरी विद्यालय गनियारी होगा। यह घोषणा कल स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने विख्यात पनवानी गायिका डॉक्टर तीजनबाई के गृहग्राम गनियारी में आयोजित अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में 103 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। दो दिनों से हो रही लगातार बारिश से राज्य के अधिकांश जिलों में जनजीवन प्रभावित, कई नदी नाले उफान पर, और समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सबसे पहले सुने लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत है ए आर रहमान का और फिल्म का नाम 1-2 का 4।

0: साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती,
3: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जय माला
3: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
6: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
8: मुझे याद सब है जरा जरा,
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
4: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
3: मन का सुकून, दिल की आरती,
4: सुरीली संदली,
9: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
11: कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुने फिल्म इंग्लिश बाबू देसी मैम से। आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की हैं, गीतकार रानी मलिक और संगीत है निखिल विनय का।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन।
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
7: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
6: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
7: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
6: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
7: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
8: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
9: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
10: कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुने, फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से। आवाज सोनू निगम की है, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत जतिन ललित का है।

फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इस फिल्म के गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम में चौपाल सुनैया जमो संगी संगवारी मल्ला आप मन के संगवारी रामविलास पटेल के राम राम जय जुहार। संगवारी हो देखा जी बढ़िया झमाझम बरसा हुआ थे और अतका तार बरसा हुआ थे ना तो खुर्रा बोए के टाइम बखत बेरा नहीं है, अब चीखला करके बोना पड़ी। अब हमार जो नार ब्यार लगाए हैं जो भी हमन भाटा पताल मिर्चा लगाए हैं तहुअर भी जलके वाला गिस ना, कारण ये हमें संगवारी हो कि अभी जो पानी गिरी से आता धूरा कुछ एक दिन ले देखा था अतका ज़्यादा गिर गए कि अतका ज़्यादा दरकार नहीं रही से यानी पानी हर बोहा गए कहा तो। और बहुत जगह में संगवारी मन वाला सकेल के राखत हैं पानी ला अपन के पार मोहिला बांध के राखत हैं ताकि चिखला माता के लेही पद्धति से बुआई करबो और बढ़िया अंकुरण हो ही करके। लेकिन अभी के बेरा में संगी हो देखा जाए तो ये वर्षा के मौसम में अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मौसम के बदलाव में हमार शरीर के जो बदलाव है एमा जो रोग बीमारी होए के खतरा बढ़ जाते। अचानक थोड़कुन गर्मी रही से ओकर बाद ये बरसाइस न चारों कोती नमी आ गिस ना घर द्वार सबो कोती अब पानी पानी लागत है और नमी हर आय बर शुरू हो गिस ना। ये बेरा में बहुत सारा चीज ऐसे हवे जिला हमला सचेत होके काम करना पड़ी। सबले पहली तो तीर तखार में नमी हुआ थे तो घर में आस पास में कोला बाकर में का होते संगवारी हो घास फूस मन जामे लागते हरा भरा हो जाते सांप बिच्छू के डर रही थे। दूसर चीज हमर लोग लड़का मन जो जूता पहन के जाते हैं तो ओला बिहनिया अगर पहिरत हैं तो एक पैंत ओला निसार के देखें या निसार के देखें का झर्रा लेवे वहाँ कछु लटकीस तो नहीं हावे एला भी देखना है। तीसर बात ये हावे कि हमार जो भी संगवारी मन है घास काटे बर जाते हैं या खेत कोती अपन के देख रेख करे बर जाते हैं तो बढ़िया प्लास्टिक वाला जो जूता आते पन्ही कैथन तेला भी लगा लें ताकि जो सांप बिच्छू काटी तो ओकर असर नहीं होए। चौथा बात ये संगी हो कि हमार लोग लड़का मन अभी स्कूल डहार जावत हैं और पानी अचानक गिरते तो ऐसने में ओमन बर पानी ले बचाव बर रेनकोट ओमन पकड़े रहें अपन कापी पुस्तक ला बचाव बर पॉलीथीन ला बढ़िया से रखे रहें ताकि ओमें समेट लें। और एक बात ये हवे कि अभी के बेरा में सड़क डहार में भी संगवारी हो का रहे थे पानी हर माढ़े रही थे तो ऐसे में गाड़ी आवत है जावत है तो आप मतलब थोड़कुन रुक के देख के ताक के जाना है कि अगर गाड़ी तेज गति से आवत है तो और छिटके के संभावना रही आप मन के डहार टेकर से जैसे लड़का में रहते तो ड्रेसर भीज जाते उनके वेसर भीज जाते हमन सामान्य आदमी हम तब भी हो जाते चार पहिया वाला जाते स्पीड मारे थे तो ओकर पानी हर अपन ऊपर छिटक थे तो ऐसे में भी ध्यान रखना है अपना अपन ला देख के चलना है। अन्य बात यह हवे कि सड़क में संगवारी हो अब फिसलन शुरू हो जाते सामान्य हम ब्रेक लगाथन सामान्य दिन में तो मैं आसानी से रुक जाते लेकिन वर्षा में पानी के कारण से फिसलन ज़्यादा रही थे तो आसानी ले रुके भी नहीं तो एकर भी हमला सचेत होना है। संग में लोग लड़का मनला हमला अभी जो मौसम के बदलाव है ओकर से जो रोग बीमारी हो सकत है और झन हो एकर बर गर्म पानी के उपयोग करना है पिए बर रथिया के बेरा मच्छरदानी ला तान के सूतना है नहीं तो काय संगवारी हो सिर्फ गुड़िया फाफा ही नहीं बल्कि अब जहरीला कीट भी संगवारी हो का होते ऐसे वर्षा काल में आते और मन काट देते हैं तो मन के काटे ले संक्रमण हो जाते तो ऐसे में संगवारी हो बढ़िया से आप मन का कहना चाहिए मच्छरदानी तान के सूता और संग में बढ़िया कपड़ा ला पहना बढ़िया पूरा ढके रहे शरीर हर तेला भी ध्यान में रखना है। संग में हमला जो भी संगवारी हो क्षेत्र हावे जहाँ ज़्यादा झुंझाट है कहते हैं जहाँ पेड़ पौधा ज़्यादा है या जहाँ पे कचरा ज़्यादा है या जहाँ

ज्यादा हरा भरा है, जहाँ पे लागत है कि यहाँ सांप भी चुरा सकते हैं, तो वैसे क्षेत्र ला जाना नहीं है। खास तौर से माई लोगन मन या गांव के मन मुनगा भाजी ला टोरे बर या तरोई डोड़का ला टोरे बर ऐसे क्षेत्र में भी जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्र में संगवारी हो आप मन बिल्कुल आप मन एहतियात बरताओ, सावधानी अपनाओ, काय लाइन तार भी रहे थे, संग में सांप बिच्छू के खतरा भी बने रहे थे। तो संगी हो ये चीज ला ध्यान रखा, डोली खेत खार भी जावा था तो रूख डाही के तीर तखार में भी ये सब चीज ला साफ सफाई रहे, वहीं बैठा वहीं आश्रय लेवा, ये सब चीज ला देख के आप मतलब काम काज ला करना पड़ी। का है संगी हो कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र बोईर दादर रायगढ़ के हिसाब ले हमला मौसम की जानकारी मिलते तो पाछू 24 घंटा में जो वर्षा हुई से जो मौसम रही से तेकर बारे में बता था आप मला, तो आज के अधिकतम तापमान रही से बिहनिया 7 बजिया तार में 26 अंश सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान रही से 25 अंश सेंटीग्रेड और 7 बजिया तार जो आर्द्रता रही से और 92% रही से दोपहर में यह बढ़ के 95%, यानी हवा में नमी बाढ़ गई। हवा की गति रही से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार ले, अब बहाव रही से दक्षिण ले पश्चिम को थी, दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो गए हैं, अभी झमाझम बारिश होए के संभावना भी जताया जाते हैं। मोबाइल मन में भी मैसेज आते हैं कि अमुक अमुक जिला अमुक अमुक क्षेत्र में भारी वर्षा हो सकत है, गरज चमक हो सकत है, एक बार मेघदूत ऐप है, दामिनी ऐप है, इला आप मन डाउनलोड करके ओकर हिसाब से आप मन चलाओ, इला भी कहा जाते संग में वर्षा जो दर्ज किया गई से और हवे संगवारी हो 123.6 मिलीमीटर वर्षा हुई से संगवारी हो, तो बहुते ज्यादा हुई से, तो ऐसे में आप मतलब देख ताक के अपन के काम काज लग करना पड़ी। और संगियों देखा ये मास के उद्यानिकी काम भी करना है, जुलाई के महीना पानी है झमाझम गिरे, चारों कोती हरियाली छाए, तापमान में कमी आए है, घनघोर घटा छावत है, माटी के सौंधी सौंधी खुशबू आवत है, चारों डार हरियाली छाए, ऐसने में हमार काम बुतार भी गजाते। काबर गजाते देखा, सबले पहले तो हमला नवा फसल लगाए की तैयारी करना है, जो भी हमन भिंडी है, बरबट्टी, लोबिया, लौकी, तरोई, कद्दू, करेला, ग्वार फली जो भी लगाना है, मक्का, भुट्टा, इला लगाना है, ये तो सामान्य बात होगी। लेकिन एकर अलावा संगवारी हो हमला पौध रोपण के काम ला करना पड़ी, का चीज के मिर्चा के, भाटा के, पताल के और प्याज के, गोंदली के नर्सरी ला भी लगाना पड़ी है महीना में। और जोन क्षेत्र में पानी भरत है वो क्षेत्र में जल निकासी के प्रबंधन करना पड़ी, नहीं तो संगवारी हो जल जमावले जड़ सड़ते और जड़ सड़ते तो कंदर थे, मुरझाए कस लागते, फिर वाला उसका हा तो जरीहर नहीं रहे, यानी जरीहर कंदर जा रहे थे, तो पानी जमाव झन हो एक बार आप मन नाली व्यवस्था करना है महीना। अभी तो अतका वर्षा हुई से अवैया दिन में और ज्यादा तेज वर्षा भी हुई, तो ऐसने में सावन में का है संगवारी, सावन के महीना जैसे आते आषाढ़ के बाद सावन है तो पूरा झड़ी लग जाते, जैसे अभी झड़ी लगे है, तो ये चीज ला करना है। संग में हमर जो फलदार पेड़ पौधा लगा के बात करते हैं, तो नावा अगर पौधरोपण करना चाहता, आमा, अमरूद, नींबू, पपीता, अनार, कटहल, चीकू जो भी फलदार आप मन लगाना चाहता, तो ये महीना सर्वोत्तम हावे, उपयुक्त हावे। आज हमने एक भेंटवार्ता भी सुनाबो आप मन साल सागौन के कैसे उमन वृक्ष के पौधा के रोपण करते हैं, कैसे आमा, अमरूद, जामुन के मन पौधा बीज के ओकर संकलन करके कैसे रोपाई करते हैं तोषेंद्र पटेल से, अहू मन के बातचीत सुनाबो अवैया समय में। तो संगी हो अभी फलदार पौधा के रोपण कर सकत है, गड्ढा ला तैयार कर लेवा आप मन के पौधा के हिसाब से, आप मन ओकर गड्ढा बनाओ, नीम के खली डाला, बढ़िया सड़े हुए गोबर खाद ला डालना है, जहां आप मन के पुराना पेड़ पौधा है वो क्षेत्र में आप मन ला थाला बनाना है, माटी ला चढ़ाना है और जो जड़ी है, तना है, जो पौधा है ओकर मुख्य भाग है वहां पानी जमा झन हो एकर बर प्रयास करना है। संग में संगवारी हो खाद प्रबंधन करना है, गोबर के सड़े हुए खाद है, केचुआ खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद है, समय के हिसाब से आप मतलब खाद ला देना पड़ी। और फूल मन की बुआई, जैसे फूल के अगर सजावटी पौधा के अगर बात करते हैं तो उद्यानिकी कार्य में अहर भी आते, जैसे मैरी गोल्ड है, गेंदा जो ला कहते हैं संगवारी हो हमारे लैलुंगा क्षेत्र एक प्रसिद्ध है, गुल मेहंदी है और नाना प्रकार के मौसमी सीजनेबल जो फूल हावे ओकर पौधा ला अभी लगा सकत हैं। और जो हम लगाए हैं कुछ कुछ जैसे गुलाब लगाए हैं, मोंगरा लगाए हैं, गुड़हल लगाए हैं, तो ओमे हल्का कटिंग छटिंग के काम ला भी आप मन कर सकता हो। और गुठली बना सकता, गुठली यानी कलम बांध सकता, कटिंग कर सकता, एकर से भी

0: वारी हो आप मन ला का होई नवा पौधा आसानी से मिल जाही। एकर अलावा इंडोर पौधा के आप मन ला भी सुरक्षा करना, ज्यादा वर्षा काल में ओला भी हमला बचाना पड़ी। कीट रोग से बचाव और फंगस से बचाव और आप मतलब फफूंद नासी दवा के उपयोग करना पड़ी। एकर अलावा जो हमर नीम तेल है एकर भी आप मन उपयोग कर सका था। समय के हिसाब से निराई गुड़ाई करना पड़ी का और पानी बरसा के दिन में बंद कचरा घास और अतका ज्यादा उगते कि झन पूछा अगर सही समय में ओकर निराकरण नहीं करिया नियंत्रण नहीं करिया तो मुख्य पौधा ले ज्यादा हो जाते। तो संगियों ये सब चीज ध्यान में रखना है और संग में आप मन जो भी दवा के उपयोग करा था और सिफारिश अनुसार मात्रा अनुसार लिपलेट में रहते लिखा रहते तेकर हिसाब से करना है। और हमारे क्षेत्र में हम बात करते हैं तो खेक्सा के खेती बहुत ज़्यादा होते, तो खेक्सा के पौधा में अभी आहरा चढ़ा के छोटे छोटे ओमा बांस के या अन्य जो जिनिस के कहना चाहिए टुकड़ा रहते ओकर जाली रहते कहना चाहिए जो पौधा रहते ओकर कंसा कंसा रहते ओला भी डाल करके ओमा ढेखरा डालना है ताकि अवैया समय में बढ़िया से संगवारी वहाँ ओकर पौधा के तना हर बगरे और लतार बगरे ओकर से बढ़िया से फल आए। तो ये सब चीज कामला आप मन करना पड़ी तभी जाके संगवारी हो आप मन के उद्यानिकी काम हर ठिन्ना हो। तो संगी हो आज के हमार प्रश्न हवे, प्रश्न ला लिखा संगवारी हो, जल निकासी की व्यवस्था करना काबर जरूरी हवे, उद्यानिकी कार्य हो या कृषि कार्य हो एमा जल निकासी की व्यवस्था करना काबर जरूरी हवे, ये रिश्ते आज की प्रश्न। अब चला आज के हमर किसान भेंटवार्ता के डहर जाबो और सुनबो ग्राम कनकी डीपा विकास खंड बरम किला के कृषक हावे तोसेंद्र पटेल। खेती किसानी के काम के संग में साल सागौन वृक्ष के रोपण करीन है और पर्यावरण पर कतका ही तैसी हावे काबर की वन महोत्सव सप्ताह चलत है 1-7 जुलाई के मध्य ला हमन मनाथन वन महोत्सव सप्ताह के रूप में। तो आवा सुनी मन के बातचीत ला। संगवारी हो राम राम जय जोहार। भेंटवार्ता के विशेष क्रम में आज हमारे बीच में ऐसे किसान उपस्थित हैं जो मन खेती किसानी के संग में वृक्षारोपण करके यानी कि संगवारी भविष्य पर निवेश करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं और करीन भी हैं। तो संगी हो आज के समय में देखा जाए तो बहुत ही जरूरी है कि वृक्षारोपण किया जाए, ऐसे में हमारे बीच किसान उपस्थित हैं। सबले पहले किसान भाई राम राम जय जोहार।
1: राम राम जी जय जोहार।
0: का नाम है संगवारी आप मन के?
1: तोसेंद्र पटेल।
0: गाँव का है आप मन के?
1: कनकी डिब्बा बरम गिरा।
0: अच्छा, तो तोसेंद्र पटेल जी आप मन खेती किसानी में का का फसल लेता?
1: खेती किसानी में टिकरा में मूंगफली उड़द मूंग।
0: अच्छा,
1: और खेत वन में धान रहते।
0: अच्छा अच्छा, अभी
1: थोड़े से
0: अभी बुआई करदा रहा?
1: हाँ करदा रहना
0: करदा रहा। अच्छा, तो जैसे ये खेती किसानी के काम और कैसे लागत है?
1: खेती किसानी बढ़िया लगता जी, लेकिन जो भी खाद उर्वरक है हमारा राखर खातु के बहुत किल्लत है जी और अच्छा। सोसाइटी में उतना मिलत नहीं है।
0: अच्छा अच्छा, तो ये भी दिक्कत है का? तो एक बार तो सरकार कहते कि जैविक खेती करा, प्राकृतिक खेती करा, गाय गरु ला पालन करा, केचुआ ला पालन करा और भुइया में हरा खाद लबो, ऐसे ढेचा सनई लगावा कहते, लेकिन का करिए अब व्यवस्था और संसाधन रही तब तो ढेचा खाद और पानी के दरकार है ना वाला माता के। तो आप मन का तकनीक से बुआई करे धान के?
1: हाँ सूखा टाइप के।
0: अच्छा, खुर्रा जो
1: खुर्रा,
0: खुर्रा, तो खुर्रा में जैसे बात करते हैं तो आप मन बुआई जोन करता तकनीक है वो खुर्रा है कहा तो?
1: हाँ वो बहरा हर वो रहते
0: चिखला रहते
1: चिखला बहरा ला माता के।
0: अच्छा, बहरा ला माता के बोया।
1: हाँ।
0: तो ये जैसे आप मन बात करते हैं धान के खेती में तो का किस्म के धान लेता?
1: बहरा के मन HMT सरना जते हैं।
0: अच्छा,
1: और जहाँ डीपा खेत है वहाँ सिल्की मोटा धान।
0: अच्छा, मतलब कम पानी वाला में
1: कम अवधि वाला
0: और ज्यादा
1: ज्यादा अवधि वाला।
0: हाँ, गजहर खेत है तो मतलब ज्यादा अवधि के लेना पड़े नहीं तो फिर दिक्कत होते कटाई के दिन में।
1: हाँ।
0: तो बहुत बढ़िया बात है। तो बुआई कर दर है तो खरपतवार नियंत्रण पर कैसे प्रबंधन करे है आप मन?
1: खरपतवार में तो पहले एक बार डालथन खरपतवार वाला, ओकर बाद तहले दो दो तीन बार तो ट्रैक्टर हल चला थन।
0: अच्छा अच्छा,
1: ओकर बाद बोए रहथन।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: अभी तहले फिर बरसात आ गई।
0: हाँ,
1: धान के
0: वो अंकुरण हो गई।
1: अंकुरण हो गई।
0: हाँ,
1: ओकर बाद तहले कीटनाशक दुकान ले अलग जो भी है खरपतवार वाला।
0: अच्छा, तो चार पान होते दो पान होते ऐसे कहते हैं तो के पान होते तो खरपतवार नाशी दवा?
1: चार छह पान
0: में करता है। तो इसमें कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि पानी भरे होना चाहिए, नमी होना चाहिए या कुछ ऐसे अनुभव?
1: नमी होना चाहिए,
0: ऐसे कुछ अनुभव है कहता आप? नमी बने रहते तो
1: बिना नमी के डाले और धान ला भी
0: नुकसान कर जरवा देते का हाँ, तो हाँ। अच्छा तो उत्पादन बढ़िया होते पटेल जी धान के?
1: हाँ बढ़िया है।
0: अच्छा अच्छा और सिंचाई के क्या व्यवस्था है?
1: सिंचाई की व्यवस्था कुछ नहीं है जी।
0: अच्छा ऊपर भरोसा है?
1: ऊपर भरोसा है।
0: खरीफ में जो खेती है वो मानसून हाँ। के जुआ हावे कहा तो
1: और दो चार जी के बोर वाला है तीचर है।
0: अच्छा अच्छा
1: और बहरा से जो जाते वाला टुल्लू पंप कुछ में निकालिए तो बंद है।
0: अच्छा माने बहुत दिक्कत है कहा तो
1: बहुत हाँ हमारे गाँव में बहुत दिक्कत।
0: अच्छा अच्छा तो पटेल जी पानी सब समस्या देखत हुए हमन अगर आज के दौर में वृक्षारोपण भी नहीं करबो तो नहीं बने है ना।
1: हाँ
0: तो वृक्षारोपण करता अपन?
1: हाँ वृक्षारोपण करता।
0: तो का पौधा लगा है आप मन?
1: वैसे मोटे तो दो पेड़ फनस के लगे है कटहल और सागौन वो टिकरा रही टिकरा बोलता ना मन आलू बरी
0: हाँ।
1: वो मैं सागौन पेड़ लगाए हैं 25-30 ठो है।
0: अच्छा 25-30 ठो
1: हाँ तो ओकर फोटो भी डाल चुका हूँ।
0: अच्छा आप मन ओकर फोटो हाँ। भी सोशल मीडिया में डाल चुके हैं
1: हाँ।
0: तो बहुत बढ़िया बात है कि आप मन सागौन के पौधा लगाए तो सागौन के पौधा लगाए के उद्देश्य का रही से आप मन के?
1: मोर उद्देश्य यही है कि वो टिकरा छोटा सा टिकरा है और मैं ट्रैक्टर चला के वो ट्रैक्टर नहीं चले तो छोटे टिकरा है ट्रैक्टर नहीं घूमे ओकर बर वाला आलू बारे भी नहीं बनाए हैं ओकर बारो में ना सागौन पेड़ लगा दे हैं और जो भी खेत है अपन के
0: हाँ।
1: उमे के पार पार रहते मेड
0: हाँ हाँ।
1: मेड मन में भी सागौन पेड़ जून भी है
0: बहुत बढ़िया बात है।
1: दूदीठी लड़की है मोर
0: हाँ।
1: दोनों लड़की के शादी पर
0: हाँ।
1: कम से कम पलंग सलंग कुर्सी उर्सी पर अपन लकड़ी मिल जाए।
0: चला चला बहुत अच्छा बात है। आजकल के समय में सब रेडीमेड उपयोग करना चाहते हैं लेकिन आप मन सोचा था कि ओकर जो सागौन के पौधा है ओकर लकड़ी से आप मन ओमन पर व्यवस्था हो जाए पलंग कुर्सी टेबल जो भी आप मन चाहा था वो बन जाए कहा तो
1: हाँ।
0: और बढ़िया बिक्री भी तो होते ना ओकर कतका साल में?
1: सरकार ले परमिशन लेवल लगते।
0: अच्छा फिर भी कतका तो साल में कतका बन जाते
1: वो? कम से कम 15 साल।
0: 15 साल में बन जाते?
1: 15 साल ले पहले तो छोटे छोटे
0: परिपक्व बनी रहे तो कतका के लगभग बन जाते?
1: अब वो तो नया बार जुड़े हैं जी सागौन पेड़ में वो करो नहीं है।
0: तो सागौन पेड़ कहाँ से लाया रहा?
1: सागौन पेड़ धावरा दरा वहाँ
0: जलाशय जो
1: जलाशय है बांध
0: हाँ, हाँ।
1: ओकर नीचे में क्यारी वो बना के
0: नर्सरी
1: लगा नर्सरी।
0: अच्छा वृक्षारोपण और पौध संरक्षण पर वो प्रयास वहाँ किए हाँ। जाते हैं ताकि मैंने
1: तो वहाँ ना पिकअप में गए रहे आंवला पेड़ है इमली पेड़ है जो भी है सब लाए रहे भी स्कूल में भी लगाए रहे तो स्कूल के देख रेख तो नहीं हो पाई।
0: नहीं आज के दौर में देखा पेड़ लगाना रही सबसे उपयुक्त वो नहीं हुई सुखर जतन करना संरक्षण हाँ। करना और जीवित रखना सबसे बड़े बात है। आप 10 पेड़ झन लगावा एक हाँ। लगावा लेकिन जीवित
1: मैं एक ही पेड़ लगाए आंगनबाड़ी के आगे में एक पेड़ लगे है वो मैं जाली भी लगा चुके हैं।
0: अच्छा
1: जाली लगाए हैं अब वो जाली निकाल के अब दूसरे अंग पेड़ बढ़ घिसना
0: हाँ तो यही काम ला करना पड़ी नहीं तो हाँ। तोसेन जी की समय देखा था पानी की समस्या है और कई प्रकार की जो समस्या हो जाते गांव घर में तो अतका ज्यादा नहीं दिखा थे हाँ। लेकिन शहर में सांस भी लिया तो पूरा प्रदूषित हवा हाँ। है ना तो ये सब चीज पर गाँव के वातावरण ला भी सुरक्षित रखना पड़े अवैया दिन में हमारे गांव भी अच्छा सुरक्षित रहे ओकर पर अभी ले हम लोग कमर कसना पड़ी है ना सिर्फ विकसित हाँ। भारत बना ली कुछ नहीं हुए विकसित भारत के संग में स्वच्छ वातावरण के भी होना बहुत ही जरूरी है। तो आप मन ये काम में बढ़िया सहभागिता निभा था और व्यवसायिक स्तर में करिए तो भी आप मन ज्यादा बहुत ही बढ़िया लाभ हो सका थे तोसेन जी ये काम में
1: हम व्यवसायिक स्तर में भी हो सका थे अभी घरेलू स्तर देखे हम
0: अच्छा
1: पौधाओं में
0: तो बढ़वार बढ़िया है। कतका साल हो गए?
1: यह छठवां साल है।
0: छठवां साल है
1: सागौन पेड़ है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: और कटहल लगाए हैं ओवर 4-5 साल हो गए।
0: अच्छा अच्छा
1: तो मैं कम से कम 35 से 50 के बीच
0: अच्छा,
1: एक पेड़ में उसकी फल निकल रहे थे।
0: अच्छा अच्छा
1: कटहल के
0: तो बढ़िया विकास होते फल मन के?
1: हाँ बढ़िया विकास होते
0: क्या होते हमारे जैसे जसपुर एरिया है धर्मजगढ़ लैलुंगा क्षेत्र है वो क्षेत्र में कटहल के बढ़िया उत्पादन होते कहते हैं
1: वो क्षेत्र में जैसे थोड़े से ठंडाई है रहते
0: हाँ।
1: हमारे कहे गर्मी ज्यादा हुए है हमारे थोड़े कम फल थे।
0: अच्छा अच्छा
1: बहुत ही ज्यादा फल थे।
0: अच्छा
1: लेकिन हमारे भी पर्याप्त है।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ
0: चला बहुत बढ़िया लगी तोसेन जी आप मन का कहना चाहिए किसान संगी जोहरिया मल्ला आज के दौर में आप मन के का संदेश रही?
1: सब किसान जोहरिया तो मोर अति निवेदन रही कि जो भी खेत है ओकर मेड़ मन में कम से कम पौधा लगाए
0: बिल्कुल
1: अपन मन इच्छा अनुसार
0: हाँ हाँ जो भी है
1: काबर सब पेड़ ला खत्म कर जाते हैं खेत मन में धूप बढ़त जाते है ना और पर्यावरण भी प्रदूषित हो जाए
0: और धूप के कमी भी कारण से भुइया के नमी भी कम हो जाए। आजकल आम वाला बिसो के खाए वाला
1: बिसो के खाए वाला लगा
0: है ना पहली
1: जबकि हमारा डोकरा मान बोबा मान नरवा खंड में लगाए हैं। हम मैं भी अभी जात रहे हैं।

0: तीन चार दिन पहले वहाँ आधा बोरा मिले पक्का फल। तो ऐसे हमन भी लगर अभी भी लगाबो
1: तो अभी समय तो, पर का, तो
0: कम से कम 6-7 साल बाद हमारे बेटा बेटिया मन पर मिल जाये ना ओकरे पर लगाना चाहिए।
1: अच्छा,
0: मैं पिछले साल 30-35 ठो लगाए भी हैं तालाब में।
1: अच्छा अच्छा,
0: और इस साल पक्का आम है, मीठा वाला आम है, ओकर बीज साथ में बड़े वाला जामुन के बीज दोनों रखे हों, और वाला पॉलिथीन मन में ना
1: डाल
0: नर्सरी।
1: अच्छा,
0: नर्सरी रूप से डाल चुके हैं।
1: अच्छा चलो, बहुत बढ़िया बात है तोसेन पटेल जी की आप मन वृक्षारोपण के काम के संग में खेती किसानी के काम ला करा था। बहुत बढ़िया लगे आप मन के विचार, आप मन हमार संग उठियावा, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार।
0: जय राम राम, जय जोहार।
2: तो संगवारियों, देखा वन महोत्सव सप्ताह में कैसे हमन किसान से भेंट करें जोन मन की पेड़ पौधा के वृक्षारोपण से जुड़ी हैं और अपन के जीवन में जीविकोपार्जन के संग में अहू कामला करत हैं। संगियों चला आवा सुनी गीत ला, झांझ भाग्य जेठ के ये गीत के बोल हावे, आगे आषाढ़ करके घनश्याम ठाकुर और संगवारी मन के गाये गीत है।

संगी आषाढ़ आगे रही। देखा संगवारी हो, घनश्याम ठाकुर और संगवारी मन के गाय गीत रही से आषाढ़ के महीना के पूरा जिक्र करत रही ने। कैसे कैसे होते टेटका, कैसे आते का होते, पूरा वर्णन रही से। तो संगी हो कैसे लागिस गीत हर जरूर बताहा आप मन अपन के क्रम चिट्ठी मिलिस माँ। अब चिट्ठी मिलिस के क्रम में बताहा करके बात हुई से तो अब चली हमार चिट्ठी मिलिस के क्रम के डहार। काबर की संगवारी हो बेरा हो गए आप मन के मायारू मन पसंद कार्यक्रम चिट्ठी मिलिस माँ। संगी हो आज के ये क्रम में आप जम्मो के स्वागत है। आज के ये क्रम में मैं हमार रामविलास पटेल एक पैंत और झोंका राम राम जय जुहार। संगवारी हो देखा ये क्रम में पहला ईमेल आई से हर एमन लिखा थे साहेब बंदगी। संगवारी आपो मला साहेब बंदगी जय जुहार। और आप मन हव गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार ले जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलाऊ दास जय दास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी। आप मन लिखा था 30 जून के हेलो संगीला सुनाई सुशील प्रधान जी बहुत अच्छा लागिस 16 आना बढ़िया लागिस। 1 जुलाई के लोक रंजनला सुनाई डिडनेश्वरी यादव बधाई एकर बार। 2 जुलाई के अजय श्रीवास साहेब जी सुनाइन बढ़िया गोट बात के संग में खेती किसानी ले जुड़े गुरतुरहा गीत ला एकर बार धन्यवाद। और 2 जुलाई के ही माटी के गीत में गीत के भाव विचार बतात हुए सुघर वन महोत्सव के बारे में बता करके गीत ला सुनाइन रीना दीदी यार भी बढ़िया लागिस। 3 जुलाई के हमार लोक गीत ला सुनाइन कोयल आवाज जैसे सुमित्रा पटेल दीदी बहुत जानदार खेती किसानी के संबंधित गीत ला लेके आ रही ने बहुत बढ़िया लागिस। आप जमो झनला दिल से हृदय से बधाई धन्यवाद। आप सबों के जो परिश्रम में मेहनत है एकर बर सलाम कहते हैं नमस्कार कहते हैं। तो संगवारी आप मन लिखिया गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार ले जितेंद्र दास मानिकपुरी और संगवारी मन आप मन लिखिया जतका भी हमार संगवारी मन के नाम लिखिया वो मन तक बधाई हर कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा थे। और आप मन के जो ईमेल हावे एकर बर हमन आप मल्ला धन्यवाद कहतन अंतसले। अगला ईमेल आई से हर माँ महामाया चौक मेघा पाराले राम कुशल पटेल संतोषी पटेल दीपांशु पटेल दिव्या पटेल दीपांजलि पटेल दीपक पटेल टेकलाल पटेल पूरा पटेल परिवार हावे एमन। एमन कहते हैं चिट्ठी मिलिस कार्यक्रम प्रस्तुत करता महोदय जिला हृदय ले माया भरे राम राम जय जुहार। तो जय जुहार संगवारी आपोमला जम्मो झनला राम राम जय जुहार। 28 जून दिन रविवार के सुबह सुबह हमन सुनेन चिंतन ला एमे बताइस हंसे के तरीका के बारे में और हमन हंसतन तो कैसे लागते हमर शरीर पर कतका फायदेमंद हावे एकर बारे में बढ़िया प्रस्तुति रही से वो दिन के चिंतन पर बहुत बहुत धन्यवाद हृदय ले बधाई। तो संगियो हमार चिंतन कार्यक्रम हर दिन अलग अलग विषय ले जुड़े रहते आप मल्ला वो दिन के क्रम के चिंतन हर अच्छा लागिस एकर बर धन्यवाद। 29 जून सोमवार के संझा बेरा ईमेल और पोस्ट कार्ड ला धर के लानिस हमार बीच में हमार हितवा मितान हमार संगवारी रामविलास पटेल जी एवं बारी बारी पारी पारी करके जमो श्रोता संगवारी मन की ईमेल और पोस्ट कार्ड ला अब्बड़ संख्या में शामिल करीन ओकर बर हृदय ले कोरी कोरी बधाई। तो संगवारी आपो मल्ला कोरी कोरी धन्यवाद ईमेल ला करे बर। 30 जून के मंगलवार के हेलो संगीला लेके आइन हमार बीच में सुशील प्रधान जी सुघर गीत प्रस्तुति रही से और बढ़िया बातचीत करीन बढ़िया फरमाइश गीत ला सुनाइन प्रकाश देवांगन के स्वर में जो गीत रही से चल चल गा किसान बोएला जाबो धान आषाढ़ आगे।

बार बहुत ही बढ़िया मन भागिस कहा थे एकर बर बोरा बोरा बधाई। तो संगवारी बोरा बोरा बधाई हमार डिडनेश्वरी यादव दीदी तक पहुंचा दे कार्यक्रम के माध्यम से। आगू लिखा था आप मन इही दिन कहा थे डिडनेश्वरी यादव के जो प्रस्तुति रही से आपकी फरमाइश में वो भी बहुत अच्छा रही से। 2 जुलाई के गुरतुर गुरतुर बोली के बोलैया हमार संगवारी अजय श्रीवास जी छोटे लाल जी लेके हमार हेलो संगवारी कार्यक्रम ला बहुत बढ़िया लागिस कहते हैं। संग मा ये महीना मा एक नवा नियम आप मन चालू करे है कि जो भी संगी संगवारी फोन लगाता हो एक महीना के बाद पुनः लगैया करके कही था तेर बहुत बढ़िया लागिस हमला सुंदर लागिस एकर से दूसर श्रोता संगवारी मन ला भी कार्यक्रम से जुड़े के मौका मिली कहते हैं। तो संगवारी बढ़िया लागे समूह लग कि हमार जो विचार है हमार जो प्रयास है हमार जो नियम है कहना चाहिए और आप मन अच्छा लागत है आप जमो श्रोता संगी मन शामिल हो एकर बार ऐसे प्रयास किया गिसे। 2 जुलाई के दिन माटी के गीत ला सुंदर 16 आना बढ़िया सुनाइन कार्यक्रम में रीना साहू दीदी हृदय ले माया भरे बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कोटि कोटि बधाई और शुभकामना कहते हैं एकर संचालन पर। तो रीना साहू दीदी तक आप मन के बातचीत आप मन के शुभकामना पहुँचा थे। 3 जुलाई के लीजिए फिर सुनिए प्रस्तुत कर रही ने श्री रामाशंकर शुक्ला जी एकर बर भी बधाई कहते हैं कार्यक्रम बहुत अच्छा लागिस कहते हैं। तो कार्यक्रम के माध्यम से अहुमन तक आप मन के शुभकामना बधाई पहुंचा थे। संग में हमर लोकगीत कार्यक्रम रही से 3 जुलाई के एला लेके आ रही ने सुमित्रा पटेल जी अहू और बहुत बढ़िया लागिस काबर की जो दिन रही से समय रही से वैसने प्रकार से इमा गीत ला शामिल किया गिस और ज़्यादा से ज़्यादा इमा गीत के संग में ईमेल और पोस्ट कार्ड ला शामिल किया गिस और सुंदर सुंदर धरती दाई के सिंगार ले जुड़े और आषाढ़ के महीना ले जुड़े गीत ले सुनाए गिस एकर बर ओ मल्ला कोटि कोटि साधुवाद धन्यवाद शुभकामना कहते हैं। तो ये जमोला लिखे रही ने माँ महामाया चौक मेघा पारा ले राम कुशल पटेल और संगवारी मन। तो आप जमो झल्ला ये कार्यक्रम की समीक्षा लिखे बर आप जमोला पुनः धन्यवाद और बधाई ऐसे ही माया दुलार बना के हमार डहार ईमेल ला पठोत रही है। आगू लिखते हैं 3 जुलाई के हमार लोकगीत के कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगी सुमित्रा पटेल जी प्रस्तुत करें और बहुत ही कर्णप्रिय रीस है उमन की आवाज़ और बहुत ही अच्छा फरमाइशी गीत ले सुनाइन भरपूर मनोरंजन हो इस कार्यक्रम में और बढ़िया सीख और प्रेरणा से जुड़े गीत रही से सफल प्रस्तुति पर सुमित्रा पटेल और आकाशवाणी रायगढ़ परिवार ला बधाई। ये बात ला लिखे रही ने मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू योगेश साहू राहुल साहू। तो संगी आप ओमला धन्यवाद। आगू लिखत हैं हमार जो श्रोता संगवारी हैं करी भदल्ले पुरुषोत्तम निर्मलकर और उनके संगवारी मन ये मन कहत हैं भारत के हृदय प्रांत यानी मध्य मध्य छत्तीसगढ़ 7 राज्य ले घिरे हावे यहाँ के लोक कला और संस्कृति के दृष्टि ले यार सिरमौर हावे। छत्तीसगढ़ जोन ला हमन धान के कटोरा के नाम ले जानथन संग में खनिज संपदा ले भरपूर हावे नदी नरवा यहाँ बहते संग में यहाँ के लोक कला अपन आप में समृद्ध हावे लोक कला में कुबेर हावे और यहाँ 12 महीना 8 काल लोक रस के फुहार फुर फुर करके उड़त रहे थे और बहुत ही बढ़िया सुगर सुगर लोकगीत हमार बीच में बगरत रहे थे चाहे हमन बात करें माटी के गीत के हमार लोकगीत के लोक रंजनी के हेलो संगी के हेलो संगवारी के ये जम्मो लोक धुनर हमेशा प्रवाह बने रहे थे प्रवाह कहना चाहिए संगवारी प्रवाहित होत रहते कहते हैं यह झल लुप्त हो और यहाँ के चौपाल के चौखट में बार बार अर बजत रहे सजत रहे ऐसे कहते हैं हमने विश्वास करत हैं और छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति संबल होत रहे। तो संगी ये मन हमें कर ही बदले पुरुषोत्तम भाई निर्मलकर श्रद्धा निर्मलकर सोनम निर्मलकर आप मन जो लिखे हुए वास्तव में सही बात हवे हमार छत्तीसगढ़ राज धान के कटोरा के संग में खनिज ले भरे हावे संग में यहाँ के संस्कृति रीति रिवाज यहाँ के खान पान यहाँ के तीज त्यौहार अपन आप में महान हावे। तो संगियों ये मन आगू लिखा थे 2 जुलाई के हेलो संगी कार्यक्रम ला अजय श्रीवास जी प्रस्तुत करें बढ़िया सीधा संवाद रही से उनके विचार भावना के बढ़िया कद्र करत उनके बातचीत करत व्यक्तित्व कृतित्व के परिचय लीन और संग में बढ़िया गीत ल सुनैन। 2 जुलाई के मधुर आवाज में रीना साहू दीदी हर प्रस्तुत करिस माटी के गीत ला बहुत ही अच्छा रही से काबिले तारीफ रही से मीठी मीठी आवाज के धनी रीना साहू जी ला धन्यवाद। तो संगवारी हो आप मन के शुभकामना बधाई कार्यक्रम के माध्यम से रीना साहू तक भी पहुंचत हावे। आगू लिखत हैं एला माँ बम्लेश्वरी रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ले नारायण लाल साहू कुलवंतीन देवी साहू दिवेंद्र प्रताप साहू नेहा देवी साहू मिलिंद कुमार साहू प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू। आप मन लिखा था
चौपाल के बैठकी में बहुत ही बढ़िया बढ़िया आप मन गीत लेके आता, बहुत ही बढ़िया संगीत ला लेके आता, संग में चिट्ठी मिली इस क्रम में बढ़िया आप

पत्र मन ला ईमेल मन ला शामिल करथा। एकर बर धन्यवाद। माटी के गीत कहन या हमर लोकगीत के बात करन या लोक रंजनी के बात करन, सब और सोला ना बढ़िया लागथे। आप मन के प्रयास हमला बढ़िया मीट लागथे, नीक लागथे। बैठकी में हमन चौपाल के या किसानवाड़ी के सुनथन तो एकर से संगवारी को हमला लाभ भी होते कहते हैं और कार्यक्रम से हमन जुड़े के प्रयास करथन। एकर बर प्रस्तुति सहयोग बर पटेल जिला और प्रस्तुत करैया कार्यक्रम के रवि आनंद साहब जिला सादर बधाई धन्यवाद कहते हैं। तो संगी कार्यक्रम के माध्यम से आप मन तक आप मन के जो विचार है यार बहुत बढ़िया हावे और वास्तव में हमारे प्रयास रहते कि हमन आप मन पर अच्छा अच्छा कार्यक्रम लेके आवन और वही प्रयास में आगू भी हमन आगू बढ़बो भी। तो आप जम्मो श्रोता संगवारी मन के सुघर ईमेल बर सुघर पाती बर धन्यवाद कहथन और चिट्ठी मिलिस के क्रमला यहीं विराम देवथन। आप जम्मो जन ईमेल कराओ एकर बर पुनः धन्यवाद। संगियो देखा अगर बात करथन तो आज के दिन खास आवे। कैसे खास आवे? सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, मानवता की उपासक और प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के आज जयंती हावे। संगियो इमन के जयंती में हमन सादर नमन करथन और इमन एक महान शिक्षाविद प्रखर राष्ट्रवादी नेता रही ने 6 जुलाई 1901 में कलकत्ता अब कोलकाता में एक संभ्रांत बंगाली परिवार में इमन के जन्म हो रही से। ये मन के खासियत ये रही से संगवारी हो कि 33 बचर के उम्र में आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबले कमती उम्र के कुलपति बने के इमला गौरव भी प्राप्त हो रही से। स्वतंत्रता के बाद एमन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पहली मंत्रिमंडल रही से तेमा भारत के उद्योग और आपूर्ति मंत्री भी बने रही ने। कई ठन नीतिगत मतभेद रही से एकर कारण से 1950 में मंत्रिमंडल एमन इस्तीफा दे दिन और देश के पहली संगठित विपक्षी दल के एमन नींव राखिन। अक्टूबर 1951 में एमन भारतीय जनसंघ की भी स्थापना करिन। एमन के एक विचार रही से एक देश में दो विधान दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे, ये नारा लले के मन के काफ़ी कहना चाहिए मन समर्थक रहने कि कश्मीर के एकीकरण पर एमन समर्थन रहने, यानी एक देश में दो विधान और दो प्रधान और दो निशान नहीं चले, एकीकरण होना है कश्मीर के, एकर पर पूरा समर्थक रहने। एमन जम्मू कश्मीर में प्रवेश पर जो आवश्यक परमिट सिस्टम रही से उसका कड़ा विरोध भी कर रही है। ओमन देश के एकता और अखंडता पर अपन जीवन के बलिदान कर दिन और इमन एक महान राष्ट्रभक्त रूप में आज हमन उमला याद करथन। और युवा वर्ग के शिक्षा के बात करथन उत्थान के बात करथन तो ये मा भी इमन के बहुत ज़्यादा योगदान रही से। तो उमन के जयंती मा हमन सादर नमन करथन वंदन करथन और कार्यक्रम में आगू बढ़त हुए सुनबो संगवारी को एक ठन सुघर गीत धरती के सपूत बेटा भगत साहू और संगवारी मन के गाय गीत हावे आवाज सुनी।

तो संगवारी हो भगत साहू और संगवारी मन के गाय गीत री से धरती के सपूत बेटा, बहुत ही बढ़िया सुघर गीत री से और काफी लोकप्रिय गीत हावे संगी हो। और चला कार्यक्रम में आगू बढ़वो और जानवो कि बकरी मन में जो सामान्य रोग होते ओकर कारण का होते, बचाव कैसे कर सकत हन, यह हावे नसीहत में गोट आज के संगी हो। देखा वर्षा काल आते तो अपन संग में कई ठन रोग बीमारी ला भी लेके आते संगी हो। बकरी अपन आप में चंचलता पर जाने जाते और सुसात जोन कैथन हमन संगवारी स्थिर नहीं रहे, एती ओती जावत रही थे, चराए बर ले जहा तो एती ओती दू मुँह ओला दू मुँह ओला दू मुँह ओला ऐसे खाते पीते एती ओती नाचत रहते। तो संगी हो ओकर चंचलता ओकर पहचान हावे। लेकिन संगी हो का होते जब रोगग्रस्त होते तो संगी हो येमा ओकर कई प्रकार के लक्षण दिखते। एक तो और चंचल नहीं रहे, और चंचल नहीं रहे के कारण का होते सामान्य रूप से हमन देखो तो कई कारण से उमन में संक्रमण होते, रोग बीमारी होते। तो ये कारण हावे कि बीमार पशु ला चाठी या खुजलाही ओकर से हो सकते, रोगी पशु के संपर्क में आते एकर से भी हो सकते, और खराब भोजन या जल है या जो दवा के छिड़काव किया गई से ओला अगर वह भक्षण कर लेते उपयोग कर लेते ओकर से, या वायुजन्य जो संक्रमण होते ओकर से, या संक्रमित पशु के संभोग ले भी हो जाते और बीमार पशु के जो आहार है या ओकर दाना पानी ओला खाए ले, या रक्त चूसक जो परजीवी रहते किलनी जू कथन हमन ओकर से और बीमार पड़ते। तो ये बीमार पड़ते तो लक्षण का दिखते, एक तो ओकर हाव भाव ले हमन देखथन कि वह अस्वस्थ नजर

थे, मुड़ी ला खाले कर देते, नीचा कर देते, और देखते हमन कि वो खाना पीना बंद कर देते और जुगाली करना बंद कर देते, और ज़्यादातर ओकर शरीर में तापमान भी बढ़े लागते और बुखार ज़्यादा तेज हो जाते तो हाँपे भी लागते, ओकर शारीरिक वजन भी घटे लागते, कम होए लागते और आँखी में तेज चमक नहीं रहे। ये सब जब लक्षण दिखा थे तो हमन समझ सकत हन कि रोग बीमारी लवर ग्रसित होत जाही। तो ऐसने में संगवारी हो बकरी मन में जो होते पीपीआर जो कहा जाते, बकरी मन के प्लेग भी कहा जाते या गोट प्लेग भी कहा जाते, एकर संक्रमण ले संगवारी हो पशु के प्राणों तक चले जाते। ये विषाणु जनित रोग होते, एकर जो बुखार होते 104 ले 106 अंश फारेनहाइट तक होते। आँखी है, नाक है, मुँह है, यहाँ ले गढ़ा चिपचिपा पदार्थ डिस्चार्ज हो लगते, पानी और मवाद जैसे मुँह के भीतर छाला पड़ जाते और बकरी दाना पानी खाना छोड़ देते, और दस्त होते तीव्र बदबूदार होते, सांस लेहे में तकलीफ होते। हमर मुँह में छाला पड़ जाते तो आप मन देखता हो कि कैसे ओहर खाए पिए पर नहीं दे, जरे लागते, जले लागते। तो एकर बचाव पर संगवारी हो एंटीबायोटिक्स दवा के उपयोग करना है, डॉक्टर ले तुरते संपर्क करना है और बछर में जो समय अनुसार से पीपीआर के टीकाकरण होते ओला जरूर लगवाना है। पशु चिकित्सक ला पशुपालन विभाग के जानकारी जरूर देवा। संग में ईटी या फड़किया रोग कहते हैं, मानसून के आगमन के संग में होते, जब नवा का होते संगवारी उल्हुआ उल्हुआ जो घास रहते ओला जब खाते तो एकर से ओकर आत्मा एक जहर बन जाते और बकरी है अचानक ले चक्कर खा जाते और चक्कर खा के गिर जाते या पैर ला पटके भी लागते। तो ये जो स्थिति है एक प्रकार से कह सकते हैं अफरा के अफरा जैसे समस्या, पेट फूलते। तो एकर पर संगवारी हो हमला वर्षा के पहली टीकाकरण और ज़्यादा हरा चारा चरे पर नहीं देना है, एक अनुपात में हो। अगर हरा चारा चरते तो घर में सूखा चारा भी देवा, एकर से भी आप मन का कर सकत है ओला वो रोग से बचा सकत है। एक होते खुरपका मुँहपका, आप मन जानते छावा, एकर ले मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा होते। विषाणु जनित रोग हावे तो संगी एकर जो घाव बन जाते पैर में, लंगड़ाया लागते, लार टपके लागते, तो ये सब समस्या भी होते। एकर अलावा निमोनिया होते, फेफड़ा के रोग होते जो उनके संगवारी श्वसन संबंधी समस्या पैदा करते। तो एकर ले भी हमला बचाव खातिर ज़्यादा ठंडा में ज़्यादा पानी में भी हमला थोड़कुन चराय व ले बचना भी है। एकर अलावा संगी हो आप मतलब हमन कह सकत हन कि जो आफरा है जो लगे कि बताएं कि ज़्यादा हरा चारा चरे ले चरते इला भी ध्यान में रखना है। अगर दस्त करत है ज़्यादा बदबूदार करत है, सामान्य ले असामान्य करत है, तो ये मा हमला संगवारी हो दवा के उपयोग करना पड़ते और दवा डॉक्टर साहब मन बताते हैं ओकर हिसाब से आप मन करिया तो आप मन के पशुला बीमारी ले बचा सकत है। संगी हो यह बहुत ही जरूरी हावे इला बचाना। और संग में हमन कहना चाहबो आप मतलब संगवारी हो कि धरती में जो है पानी वाले बादल मतलब आकर्षित करे वाला चुंबक हावे तो हर वन हावे, वन यानि जंगल। संगवारी हो जंगल में आज हमन देखा था नाना प्रकार की जीव जंतु हावे, पेड़ पौधा हावे, एक सिस्टम बने हावे, उस सिस्टम में लगातार कटाई ले संगवारी हो लगातार दोहन ले समस्या हुआ थे। ऐसने में संगवारी हो देखा जाए तो वन के प्रति लोगन मन के रुझान ला बढ़ाए बर पेड़ पौधा झन कटे एकर बर, और वृक्षारोपण के कोती आगू आए एकर बर, एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के डहाले चले रही से ओला भी सफल बनाए बर। संगवारी हो वर्तमान जो बेरा रही थे जुलाई महीना के पहली सप्ताह बहुत ही सुघर रही थे। तो एकर हिसाब से संगवारी हो हमन कहना चाहबो कि वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाते 1 ले 7 जुलाई के माझाला। तो ऐसने में संगवारी हो आप मन पेड़ पौधा जरूर लगाओ। पेड़ पौधा में फलदार वृक्ष है, आमा है, सहजन है, मुनगा जो लगाते हैं जामुन है, ऐसे कई प्रकार के आप मन पेड़ पौधा लगा सकत है। संगी हो जहाँ पारिस्थितिकी तंत्र हावे, जहाँ संतुलन हावे, जहाँ ले हमला प्राण वायु मिलते जो हर बादल ला आकर्षित करके वर्षा कराते, एकर ताज़ा उदाहरण हमन कोई गांव कोती जाथन तो देखथन कि जेन डाहर में ज़्यादा रुख राही रही थे जंगल रही थे वो डाहर ज़्यादा पानी गिरते। तो हमन स्वाभाविक रूप से कहथन भी कि ये डाहर ज़्यादा पानी गिरते काबर रहती पेड़ पौधा ज़्यादा है।
तो संगी हो हमन भी अपन के कोला बारी मा पेड़ पौधा ला लगाई और वृक्षारोपण करके ओकर जतन करे के प्रण करी। एक साल मा एक पेड़ के भी जतन करबो तो हमर पर काफी लाभप्रद होई। तो संगियो ऐसने में झन काटो रुक राहिला। संगियो एक गीत हावे, ये गीत ला आप मला सुनाबो और यहीं से जुड़े बढ़िया गीत हावे झन काटो रुक राहिला। लखनलाल नेताम और ओकर संगवारी मन के गाय गीत हावे, आवा सुनी।

0: तो संगवारी हो कार्यक्रम में आगू बढ़वो और सुनबो एक ठन संदेश ला।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: संगी हो आज दिन खास हवे स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक बाबू जगजीवन राम, ये मन के आज पुण्यतिथि हवे, सादर नमन करथन। और 5 अप्रैल 1908 में इमन के जन्म हो रही से, और आज हवे पुण्यतिथि 6 जुलाई 1986 में इमन के निधन हो रही से। बिहार के चंदवा भोजपुर में इमन के जन्म हो रही से। भारतीय राजनीति में मतलब संगवारी हो बाबू जी के नाम ले भी जाना जाते, विख्यात हमें। और वर्ष 1937 में पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए रहने, और स्वतंत्रता के बाद भारत के पहली श्रम मंत्री भी बने रहने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एमन सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन एमन सक्रिय भूमिका निभा रही ने, एकर खातिर एमल जेल भी जाना पड़ रही से। रक्षा मंत्री के रूप में भी एमन के कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रही से। भारत में जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो रही से, एमा जीत भी हो रही से और बांग्लादेश के उदय भी हो रही से। एमन के जो कार्यकाल रही से, भारतीय कृषि में हरित क्रांति के दौरान कृषि मंत्री के रूप में भी एमन के योगदान रही से। एमन भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में 1977 ले 1979 तक रहीन है, और लगभग 8 दशक तक एमन सक्रिय राजनीति में रहीन है, और एमन विश्व रिकॉर्ड भी बना रही है। एमन अछूत और दलित वर्ग के उत्थान पर 1935 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के भी स्थापना करी ने, और वास्तव में समाज सुधारक भी रहने और स्वतंत्रता सेनानी भी रहने, और बढ़िया एमन के कामकाज रही से। तो एमन के पुण्यतिथि में हमन श्रद्धा सुमन अर्पित करथन, नमन करथन और वंदन करथन। संग में संगवारी हो आज के दिन और खास हावे का हावे, आज हावे संगवारी हो विश्व जूनोसिस दिवस। तो संगी हो ये दिवस ला मनाए के मुख्य उद्देश्य यह हवे कि जो मनखे मन में रोग फैलते, पशु मन ले मनखे मन में जो बीमारी फैलते, वो बीमारी के प्रति रोकथाम के उद्देश्य ले ये दिवस ला जूनोसिस दिवस ला मनाया जाते, जिला मनाया जाते आज। और एकर ये बच्चर के थीम हवे, एक विश्व एक स्वास्थ्य, जूनोसिस को रोकें। संगी हो ये दिवस ला मनाए के कारण आज ही के दिन 6 जुलाई 1885 लुइस पास्चर डहाले रेबीज के पहली सफल टीकाकरण के जो याद रही से, एकर उद्देश्य से इलाई सुरता बनाए रखे बर ये दिवस ला मनाया जाते। तो हमारे पशु मन ला भी एकर से बचाना है। संग में अभी के बेरा में संगवारी जो खरपतवार नासी रसायन है, दवा है, एकर उपयोग में भी हमला सावधानी अपनाना है, और सही जगह ले दवा की खरीदी करके उपयोग करना है। पक्का रसीद और बिल जरूर लेना है। अब संगियों बखत बेरार कहा थे घड़ी के आज के कार्यक्रम ले विदा ले के, तो संगवारी हो आप मन के संगवारी रामविलास पटेल ले दो विदा। राम राम, जय जोहार।

चौपाल कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। आइए अब सुने गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

0: अभी आप सुन रहे थे योगेश का लिखा गीत, आवाज थी मन्ना डे की।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
0: गैर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आइए एक बार फिर से सुने मन्ना डे की आवाज। गीतकार हैं मधुकर राजस्थानी।

मन्ना डे के गाए इस गीत के साथ ही गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

बादशाह फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। अभिजीत और साथियों की आवाज़ें थीं, गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीत था अनु मलिक का। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है, रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद

0: कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
2: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
3: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
4: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
5: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस बीच IMD ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और

0: कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ. जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ. अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्लाह अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉ. गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6th स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्र गिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एक मुसाफिर एक हसीना, इस फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। राजा मैंने लिखा के बोल संगीतकार ओपी नैयर।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना हसरत जयपुरी का लिखा हुआ और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। फिल्म का नाम लाल पत्थर।

0: लाल पत्थर फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का कार्यक्रम आपके लिए संपन्न होता है।
1: यह है विविध भारती।
2: आज के फनकार प्रोग्राम सुनिए थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज। तो जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: परीक्षित साहनी के नाम से दोस्तों यूं तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिल्मों में प्रवेश के समय उनका फिल्मी नाम था अजय साहनी। परीक्षित से अजय बनने की कहानी आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: जब मैं अनोखी रात में काम कर रहा था तो संजीव ने कहा, यार मेरा नाम दरअसल है हरी भाई जरीवाला, और अगर मैं अपना नाम हरी भाई जरीवाला दूं स्क्रीन पे तो मैं दो दिन नहीं चलूंगा। अगर तू ये नाम देगा तो तू नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोई प्रोनाउंस नहीं कर सकता। बंगाली में परीक्षित कहते हैं, पंजाबी में कुछ परीक्षित कहते हैं, यहाँ पे हिंदी वाले परीक्षित कहते हैं। ये नाम बड़ा मुश्किल है, और मैं सच सच आज कह रहा हूँ आपको, मैं अपने आप को बड़ा बदकिस्मत समझता हूँ कि मुझे पिताजी ने ये नाम दिया। ये नाम दरअसल दिया टैगोर साहब ने। टैगोर साहब वहाँ पे बैठे अपना क्या नाम है शांति निकेतन में, जब मेरी माताजी के गर्भ में था मैं, जब वो गर्भवती थी, जब मैं उनकी कोख में था, तो वो इम्तिहान दे रही थी बीए का, वही शांति निकेतन में। अब मेरे पिताजी और माताजी वहाँ काम किया करते थे एज प्रोफेसर, तो वो बीए का इम्तिहान दे रही थी। तो गुरुदेव टैगोर ने कहा, अभी ये इसके पेट में जो बच्चा है उसने भी दे दिया बीए का इम्तिहान, इसका नाम परीक्षित रखना अगर लड़का होगा तो।
0: अभिनेता संजीव कुमार ने परीक्षित को अपना मनपसंद नाम दिया अजय साहनी। उनकी शुरुआती कई फिल्मों में उनका यही नाम था अजय साहनी।
1: और उसके बाद फिल्म हिट हो गई तो पवित्र पापी हिट हो गई, फिर उसके बाद वो हिट हो गई क्या नाम है समाज को बदल डालो, फिर बस अजय साहनी शुरू हो गया। और मुझे लगे कि ये हो क्या गया दुनिया में।

0: परीक्षित साहनी की अधिकतर पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल्स में हुई। बाद में दिल्ली और पूना में उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करने वो रूस जा पहुंचे। हालात कहीं अकस्मत, जब वो लौटे तो डायरेक्टर बनते बनते इंडिया में आकर एक्टर बन गए।
1: कहानी बड़ी अजीबोगरीब है कि अपना अशीत सेन साहब मॉस्को आए थे, उनके साथ दोस्ती हो गई मेरी, और जब मैं वापस लौटा तो मैं ये पवित्र पापी फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा था। हमने सुनील दत्त साहब को साइन कर लिया था, तनुजा को साइन कर लिया था, गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। मैं अपने आप को बड़ा इम्पोर्टेंट महसूस कर रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे कि मैं अपने डायरेक्शन करने जा रहा हूँ। तो बीच में एक थोड़ा वक्त था फिल्म शुरू होने में, तो अशीत सेन साहब एक दिन मिल गए, वो मुझे याद आया कि तो मॉस्को में मुझे मिले थे, और उन्होंने कहा भी मैं एक छोटी सी फिल्म बना रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, हम 24 दिन में ख़त्म कर देंगे, और उसमें एक छोटा सा रोल है। तो मेरे एक आदत थी उसूलन, जब मैं बड़ा हो गया मैं झिझकता था पिताजी से पैसे मांगने में, इसलिए जब इन्होंने कहा कि भाई तुम्हें 10,000 रुपये देंगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी वो, तो मैंने हाँ कर दी वो अनोखी रात फिल्म के लिए। और फिल्म जब शुरू हुई तो एक हफ्ता नहीं हुआ था कि प्रोड्यूसर साहब ने डायरेक्टर साहब को कहा कि इस शख्स को निकाल दो इस फिल्म से। वो दरअसल बात ये थी कि मैं 6 साल रूस में रह के आया था, और उस ज़माने में मैं रूसी ही बोलता था, हिंदुस्तानी से वाकिफ नहीं था ज़्यादा, डायलॉग बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही थी मुझे। मैं आज तक कभी कभी अपने आप को अजनबी सा महसूस करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी के 6 साल जवानी के एक जगह में बिताना, और वो भी रूस जैसी जगह में, तो वापस लौटकर थोड़ा सा एक झटका लगता है आदमी को। और ये दादा मुनि हमारे अशोक कुमार साहब भी आखिरी दम तक कहते रहे तेरी डिलीवरी बड़ी अजीब है यार, तू गलत जगह पे पॉज लेता है, ये गलत सेंटेंस को स्ट्रेस करता है। तो उस वक्त फिर अशीत सेन साहब ने कहा प्रोड्यूसर को कि ये जिस तरह से बोल रहा है ऊटपटांग, लोगों को पसंद आएगी, इसको अभी मत निकालो। और यही हुआ। मैं तो सोचता था कि फिल्म आएगी और जाएगी और लोग भूल जाएंगे कौन हूँ मैं, मगर पता नहीं सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश फिल्म बड़ी हिट हो गई।

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने अजय साहनी के नाम से कई फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई थी। हालांकि बचपन में भी दो तीन फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार की भूमिका अदा की थी, लेकिन उनके पिता महान कलाकार बलराज साहनी साहब चाहते थे कि उनका बेटा पहले तालीम हासिल करे और बाद में कुछ और बने। आपको याद होगा, राजश्री प्रोडक्शन की मशहूर फिल्म तपस्या में परीक्षित साहनी ने अभिनेत्री राखी के साथ एक बेहतरीन भूमिका अदा की थी। आइए सुनते हैं उसी फिल्म का एक गाना।

मैं उस ज़माने में भी ज़्यादा रुचि मेरी पेंटिंग वगैरह में थी, मैं पेंटिंग बहुत करता था, फोटोग्राफी, ये ब्रॉडकास्टिंग में बड़ी बड़ी दिलचस्पी थी मेरी। मैं मॉस्को रेडियो के लिए काफ़ी साल काम करता रहा एज एन अनाउंसर। ये रेडियो मॉस्को है, अब आप देश विदेश के समाचार सुनिए। ये स्क्रीन कैमरे के सामने एक्टिंग करना किसी हद तक ज़्यादा आसान है, पिताजी भी मेरे यही कहा करते थे। वो भी मुझे कहते थे कि बेटे मैंने एक्टिंग अगर सीखी है तो रेडियो पर सीखी है। जो मैं बीबीसी में माइक्रोफोन के सामने बैठ के एक्टिंग किया करता था वो प्लेस किया करते थे उस जमाने में, और जो उससे मेरा तलफ़ुज ठीक हुआ, उससे मैंने बोलना सीखा, उससे मेरी आवाज़ ठीक हुई। और ये जो स्टूडियो में बैठकर श्रोता तो हमें सुन रहे हैं सिर्फ, बहुत दूर है मुझसे, उन्हें महसूस कर रहा हूँ मैं, मुझे देख नहीं सकते वो, इसलिए मैं सिर्फ अपनी आवाज़ के ज़रिए उन्हें मुतासिर कर सकता हूँ।

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने तमाम फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं और उनके अभिनय को आपने टीवी के पर्दे पर भी कई सीरियल्स में जरूर देखा।

था होगा। उन्होंने अपने हर किरदार को साकार किया है और हम भी उनको यही शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपनी अभिनय यात्रा को निरंतर जारी रखें और अपने चाहने वालों का दिल बहलाते रहें।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: यह है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
2: विविध भारती कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाश इंद्र से। रायगढ़ केंद्र है विविध संगीत कार्यक्रम। पहले सुने अमित कुमार और उदित नारायण का गाया यह गीत।

0: साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी और गेम्स के साथ साथ फ्री और से शुरू। तो आप वेव्स ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
4: नई अगरबत्ती की खुशबू तो
0: अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन, मगर गांव नई अगरबत्ती के बाद

0: विविध संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए आमिर मीनाई की लिखी गजल, आवाज है जगजीत सिंह की।
1: सरकती जाए सरकती

मुझे एक लतीफा याद आ गया। इसी तरह एक गाना चल रहा था कहीं तो वो शेर दोबारा, उसके बाद फिर मुकर तो गाने वाले दोबारा, उसके बाद फिर मुकर तो गाने वाले तीसरी दफा फिर पड़ा, लेकिन फिर तो गाने वाले के साहब मुझे तो कि जब तक आप इसको सुर में नहीं पड़े

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्म, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं। आज ही डाउनलोड और बढ़ाइए अपना ज्ञान। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें
1: अरे जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा?
1: अगले खाने के लिए नहीं, दुकान में लगने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए।
1: गोपाल की बात किए रे।
2: क्यों नहीं मान, रेडियो जो सुनता।
0: दुकान व्यापार या सेवा का प्रचार
3: विविध संगीत में आइए सुने। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार।

अभी आप सुन रहे थे आवाज थी अहमद और मोहम्मद हुसैन की। इसके संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। केंद्र है लीजिए फिल्म अनुबोध।

और सभी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए ये पहला पत्र बांटा शुभम

गीत आवाज में लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की गीत।

जारी है हमारे दोस्तों के पत्रों के साथ। तो आइए अगला गेंदु भाई और यहीं से हैं पीपल उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी दिवाकर भानुप्रिया योगिता नितिन।

अनुरोध कर लिया है फिल्म हमसाया से। अब क्योंकि गीतकार सेवान रिजवी और संगीत है। वर्मा, दीपक उजला ठाकुर जो भैंस आप सभी हैं आज खुशी और शुक्र।

यीशु और अंशु गुप्ता। मोरबा से भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, फारूक, ललन मिश्रा। ढोली साकरा से जयंत कुमार वैरागी। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम और चांदनी नाज। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। ग्राम रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या साहू और डिकेश कुमार साहू। लीजिए सुनिए आप सभी अपनी पसंद पर फिल्म झूम का ये गीत। आवाज किशोर कुमार की, गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है किशोर कुमार ने।

तो सुना कोई जिसको सुन मिले।

के अंतिम गीत की ओर। और आज का अंतिम गीत है लता मंगेशकर और मुकेश के आवाज से है। इस गीत के आप सभी ने छत्रपति राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, जिला खपरी कला छत्तीसगढ़ से हैं, संतोष कुमार, सोनी, सुनीता, अखिलेश, नेहल, पीहू, छोटी, दानिश, दीक्षा, संजय, पूजा, रामा, पूर्वी, पुलकिता, खुशी, लल्लू पांडे और भूषण सोनी, गांधी चौक देव मीका, बलविंदर वीरक, जयतेग वीरक और मीका वीरक, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा, चेतन शीतल दास, सुशीला साहित्या, मनोज मुकेश और अंकित साहित्या, सुरेश और पूर्णिमा सारथी, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से हैं, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, छत्तीसगढ़ प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झाविन कुमार वर्मा। तो आ फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम अनुरोध अभी आप सुन रहे थे। एफएम रायगढ़ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति

0: तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said, "The thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India."
3: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए